एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ। नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछ हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही है।
1: वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे

सत्ता मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहतदारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल महमूद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने

0: प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज या ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में, इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:05 हुए हैं। चिंतन।

संसार में यदि किसी को यश मिलता है तो अच्छे विचारों से ही मिलता है। कोई विशेष गुण प्राप्त हुआ है तो निश्चय समझो कि उसने किसी सत्पुरुष का संग किया है, क्योंकि मनुष्य स्वयं स्वच्छ वस्त्र के समान है। जैसा रंग चढ़ा दिया जाएगा वैसा ही हो जाएगा। अतः हमें अपने जीवन रूपी वस्त्र को प्रभु के रंग में रंग लेना चाहिए, उनकी भक्ति को जीवन उद्देश्य बना लेना चाहिए, सत्कर्मों को ही अपनी कर्म भूमि मान लेना चाहिए और परहित को अपना सुख बना लेना चाहिए। यही सफल जीवन की निशानी भी है।

सतगुरु की कृपा से, आत्मविचार की सच्चाई से उस परम सत्ता राम का राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और उन्हें बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है। वे बल

बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वे संकटों से रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का भाग 127।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पांवड़े देती नवविवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में आज विशेष के साथ जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। इसके साथ साथ जानकारी देंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर। सात बजकर 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। प्रातः 8:30 पर पहाड़ी नाटक नौखे लोग नौखियां गल्ला प्रसारित किया जाएगा। नौ बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। गीतों का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 10:00। 10:30 पर सुनिए पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में लोकगीत। ग्यारह 11:05 पर लोक संगीत आपको सुनवाया जाएगा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की में। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा कुछ भजन। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर फिल्म संगीत सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ में। 6:30 पर कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 9:15 पर एक ही गायक के क्रम में आज सुनिए गायक नितिन मुकेश के गाए कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत कार्यक्रम धाम गीत आदि में। और रात्रि 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुनिए चित्रपट संगीत में। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 11:00 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9:00। दोपहर 1:00 शाम 5:00 7:00 रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार। दोपहर 1:05 शाम 5:05 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत के 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran.

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी के इस अंक के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज के सुविचार के साथ। श्रोताओं, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, इसलिए स्वयं को पहचानिए और अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए। जो स्वयं पर भरोसा कर लेता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओ, आज 23 जून है और 23 जून का यह दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। तो देते हैं आपको जानकारियां आज के इस इतिहास की। श्रोताओ, आज के दिन 23 जून 1994 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया था। साथ ही आज ही के दिन 1994 में ही उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा हुई थी। 23 जून 1995 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव पारित किया था। तेईस जून 2008 में प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की थी। आज ही के दिन 2008 में ही टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मेक्सिको की टायर कंपनी टॉर्नल व उसकी सहायक कंपनियों सहित 270 करोड़ डॉलर का अधिग्रहण किया था। 23 जून 2014 में गुजरात

0: रानी का बाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। आज ही के दिन 23 जून 1953 में महाशिक्षाविद, चिंतक और साथ ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। तेईस जून 1907 में भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहड़ी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1912 में अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का जन्म भी हुआ था। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।
1: अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को 57/277 प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इस दिवस पर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मानवता की सेवा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा संस्थानों में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए योगदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष इस दिन संयुक्त राष्ट्र जन सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित करता है। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। श्रोताओं, कई देशों में लाखों विधवाओं और उनके आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का दिन है ये। यह दिन प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। विधवापन के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लुबा फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की स्थापना की गई थी। 23 जून का महत्व यह है कि 1954 में उसी दिन फाउंडेशन के संस्थापक लॉर्ड लुबा की मां श्रीमती पुष्पावती लुबा विधवा हुई थी। फाउंडेशन के लक्ष्यों में से एक यह है कि यह एक अदृश्य आपदा के रूप में वर्णित है। 2010 की एक किताब इन विजिबल फॉरगेटन सफरर्स द प्लाइट ऑफ विडो अराउंड द वर्ल्ड का अनुमान है कि दुनिया भर में 245 मिलियन विधवाएं हैं, जिनमें से 115 मिलियन गरीबी में रहती हैं और विशुद्ध रूप से सामाजिक कलंक और आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पतियों को खो दिया है। लुबा फाउंडेशन के जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में यह अध्ययन 22 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को प्रस्तुत किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2005 में हुआ था। और कार्यक्रम में अब जानकारी देंगे खबर आज की। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं समाचार की सुर्खियों पर। लखनऊ में एक व्यावसायिक भवन में भीषण आग लगने से कम 15 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। भारत में मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, दिल्ली में जल्द होगा दस्तक। भारत और अमेरिका ट्रेड डील जल्द होगी फाइनल। भारत और चीन के शीर्ष अधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रगति पर चर्चा की। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 में कई रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और अर्जेंटीना ने नॉकआउट

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम शुभ प्याग का। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सीताराम व साथियों की आवाजों में गाए इस लोक भजन के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू। एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरिना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राज प्रभाकर की आवाज में गाया ये लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ ब्याग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
1: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
2: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की

0: पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक शॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं शेर सिंह की आवाज में गाया ये लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 9 बजे और अब समय है कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का।
1: हेलो धर्मशाला,
2: हेलो धर्मशाला।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर है कार्यक्रम हेलो धर्मशाला के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और सुनते हैं अपनी पसंद के गीत जो फिल्में हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वो फिल्में हैं ब्लैकमेल, कारवां, दिल, पद्मावत, राजा हिंदुस्तानी, राम तेरी गंगा मैली, साजन, तलाश, टॉयलेट एक प्रेम कथा और जंजीर। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं, और आपको डायल करना होगा हमारे केंद्र का फ़ोन नंबर, और वो है 01892224391, यानी 01892224391। इस नंबर पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और अपनी पसंद जो है वो हम तक पहुंचाइए, और हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल

0: नमस्कार, मैं डिंपल कुमार बोल रहा हूँ सरा से।
1: डिंपल जी, सबसे पहले तो अपनी फरमाइश बताइए,
0: राजा हिंदुस्तानी मैम,
1: कौन सा गीत सुनेंगे इसका?
0: कोई भी मैम, अच्छा सा। हाँ
1: कोई भी अच्छा सा।
0: जी, हाँ जी,
1: अच्छा डिंपल जी, क्या करते हैं आप?
0: मैं जॉब करता हूँ डीपू में मैम।
1: अच्छा, और साथ में यहाँ के कार्यक्रम भी सुने जाते हैं?
0: मैं डेली सुनता मैम।
1: बाहर तो खूब धूप लगी होगी अभी, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: और साथ में प्रोग्राम चल रहा है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: चलिए अच्छी बात है। और अब सुनिएगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: ठीक है जी।

0: हेलो धर्मशाला।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: मध्य प्रदेश से मोहम्मद, आगे क्या बोला?
1: मोहम्मद हारून।
0: हारून, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: और क्या लगा रखा है आपने अपने खेतों में?
1: अभी बारिश के इंतजार कर रहे हैं।
0: अच्छा, अभी इंतजार में है। और उसके बाद कौन से बीज लगाएंगे आप बारिश होने के बाद?
1: बारिश के बाद में नवंबर में है चना, गेहूं, मसूर।
0: अच्छा, अब पहले ये बताइए कौन सा गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएं?
1: कौन सी फिल्म में है?
0: ब्लैकमेल, कारवां, दिल, पद्मावत, राम तेरी गंगा मैली, साजन, तलाश, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और जंजीर।
1: साजन का सुनवा देना।
0: कौन सा गीत?
1: कोई सा भी।
0: कोई सा भी। अच्छा, और खेती बाड़ी में अभी कुछ भी नहीं लगा आपके खेतों में?
1: हाँ, अभी कुछ नहीं लगा हुआ है।
0: और गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, है ना?
1: गर्मी भी पड़ रही है और कुछ बादल भी छाए हुए हैं।
0: अभी
1: इंतजार कर
0: बारिश,
1: रहे हैं बारिश हो
0: हाँ,
1: जाए, भूनी हो जाए।
0: मानसून आ रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है, आप तक भी ज़रूर पहुंच जाएगा वो, है ना? और आपकी
1: जी,
0: खेती बाड़ी
1: हांगकांग
0: का
1: तो
0: काम,
1: बारिश भी, हांगकांग तो बारिश भी हो रही है।
0: हाँ, थोड़ी थोड़ी तो हो रही है, लेकिन आपको खेती बाड़ी के लिए तो ठीक ठाक बारिश चाहिए, तभी आपके खेत जो हैं वो लहलहा सकते हैं, है ना?
1: जी, ऐसी बारिश होगी जैसी बोनी हो जाएगी, 2-3 पानी गिरेंगे तो बोनी हो जाएगी।
0: चलिए, अच्छी बात है। और आकाशवाणी धर्मशाला के सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी, फोनन कार्यक्रम ज्यादातर सुनते हैं। और आपके इधर नहीं हो रही है बारिश?
0: नहीं, यहाँ भी थोड़ी बहुत, थोड़ी सी गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है। अच्छा मौसम है, ज़्यादा गर्मी होने नहीं देती है यहाँ पर, जल्दी ही बारिश आ जाती है, थोड़ी सी ठंड हो जाती है गर्मी से।
1: जी,
0: जी, और अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद।
0: ठीक है जी।

0: हेलो धर्मशाला,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं? लीजिए, इनका नंबर जो है वो कट गया, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल करिएगा हमें और अपनी पसंद के गीत जो हैं वो आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 01892224391 पर।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो धर्मशाला।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रही हैं? लीजिए, हमारे जो श्रोता हैं वो जल्दी ही हमारा साथ छोड़ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप पहले सिग्नल में आइए, फिर हमसे बात कीजिए, तभी आप अपनी पसंद के गीत जो है वो सुन सकते हैं। नहीं तो आप डायल करते रहेंगे और फ़ोन करता रहेगा, तो सिग्नल में ज़रूर रहें, तभी हमसे आप बात कर सकते हैं। और जिन फिल्मों के गीत अब कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं वो हैं ब्लैकमेल, कारवां, दिल, पद्मावत, राम तेरी गंगा मैली, तलाश, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और जंजीर। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। आपको डायल करना होगा हमारे केंद्र का दूरभाष नंबर, वो है 01892224391, यानी 01892224391। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा प्रातः 9:30 पर भी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1,015-1,700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
7: अच्छा, इसमें क्या होगा?
6: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
7: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई OTP देना होगा?
6: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP नहीं मांगा जाता।
7: अच्छा,
6: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षर। पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिलफेड की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरण

0: की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए की लागत से 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड की मंडी स्थित चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है, जबकि यहां करीब 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के मिल्कफेड की चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इकाई प्रभारी विश्वकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए प्लांट में एक अतिरिक्त पॉस्चराइजर स्थापित किया गया है और रेफ्रिजरेशन क्षमता बढ़ाने का कार्य भी जारी है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद प्लांट की क्षमता बढ़कर लगभग 1,50,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ा है। जनवरी 2023 में लगभग 9,000 दुग्ध उत्पादक जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21,000 से अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मई माह के लिए लगभग 15,70,00,000 रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है और जल्द ही भुगतान की पूरी प्रक्रिया DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश में पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशन धारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के वर्ष 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं की CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश में झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपयों की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 486 करोड़, वर्ष 24-25 में 526 करोड़ और वर्ष 25-26 में 676 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,000

0: 9,963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम सहित रिज मैदान पर इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप शामिल है। राज्य में हरित आवरण में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना के अंतर्गत वन विभाग कुल्लू ने 2 निजी संस्थाओं के साथ MOU साइन किया है। जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाएं वन विभाग द्वारा चिन्हित वन क्षेत्रों को गोद लेकर पौधारोपण, इको रेस्टोरेशन तथा उनके रखरखाव का कार्य करेगी। प्रदेश की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति से हमारे संवाददाता।
1: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी के भी आसार बने हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, HRTC कर्मियों को राहत, मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ जारी। बागवानी विभाग में भरे जाएंगे 450 पद शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, सेब बागवानों को मिलेगी बेहतर तकनीकी सहायता। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिम केयर योजना का दायरा बढ़ा, अब 10 लाख तक स्वास्थ्य कवर। हिमाचल के 37 दवा उद्योगों में बनी 44 दवाएं जांच में फेल, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह से लेकर गैस्ट्रिक रोगों की दवाइयों के साथ 4 सिरप भी शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षरित। पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्ति पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिल्क फैट की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता, प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 AM। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
3: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का शेष भाग। हेलो धर्मशाला
6: जी, गुड मॉर्निंग मैम।
5: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं?

0: जी, मैं सोनी बात कर रही हूँ कचियारी से।
1: सोनी जी, पहले तो अपनी फरमाइश बताइए।
0: जी मैम, मुझे पद्मावत मूवी का गाना सुना देना।
1: कौन सा?
0: जी मैम, एक दिल है एक जान है
1: ठीक है,
0: वो।
1: आप क्या करती हैं सोनी, ये बताइए।
0: मैम वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, पर लेकिन घर पे ऐसे कपड़े वगैरह स्टिच कर लेती हूँ।
1: चलिए, अच्छी बात है, आपने कोई ना कोई रोज़गार का जो जरिया है वो ढूंढा है अपने घर में ही, है ना?
0: जी मैम, जी
1: कुछ ना कुछ हो जाता है अपना खर्चा, है ना?
0: हाँ जी मैम,
1: चलिए, अच्छी बात है। सोनी जी, अब सुनिएगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत,
0: जी मैम, थैंक यू।
1: ठीक है जी?

0: हेलो धर्मशाला।
1: हेलो अनुराधा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरियां के गांव महतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: जंजीर फिल्म का सुना दीजिएगा, प्राण और अमिताभ बच्चन
0: जी। इन्होंने कॉल किया, इनका कॉल जो है वो पूरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम इनकी जो फरमाइश है वो समझ गए हैं और इनकी फरमाइश पर चला रहे हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: जी पहले अपनी फरमाइश बताइए।
1: बताइए मैडम, कौन कौन से फिल्म निकाले हैं?
0: ब्लैकमेल, कारवां, दिल, राम तेरी गंगा मैली, तलाश और टॉयलेट एक प्रेम कथा।
1: ब्लैकमेल का गाना है सरबती तेरी आंखों से, गायक किशोर कुमार का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये
0: और
1: धर्म
0: करते क्या हैं आप?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस कर
0: लीजिए, इनका संपर्क भी है वो टूट गया है, कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी फरमाइश हमें बता दी है, तो उनकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं इनको उनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह।

0: हेलो धर्मशाला
1: जी। नमस्कार जी, मैं परसराम बोल रहा हूँ, हर से मानसर मुकेरिया।
0: अच्छा परसराम जी, पहले फरमाइश बताइए अपनी।
1: आज ना मैंने रामसरी गंगा वैली का गाना सुनना है।
0: कौन सा?
1: हुसन पहाड़ों का।
0: अच्छा, और करते क्या हैं परसराम जी?
1: मैडम मैं BSNL डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और शूज की ना
0: लीजिए, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद हमारे केंद्र से जो है वो गाने सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हमें बता रही है, तो इनकी फरमाइश ज़रूर पूरा करेंगे। इनकी फरमाइश पर सुना रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग जी।
0: गुड मॉर्निंग जी, जल्दी से पहले अपनी फरमाइश बताइए, फिर अपना नाम बताइए।
1: पिक्चर भूल गए मैडम जी।
0: कारवां, दिल तलाश और टॉयलेट एक प्रेम कथा। लीजिए, इन्होंने जो है संपर्क हमारा इनसे टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा डायल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। इस नंबर पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, तलाश का सुना दीजिए, कोई भी गाना जी,
0: कोई भी गीत। अच्छा, आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: हाँ जी, उपदेश दीवान बोल रहा हूँ जी।
0: कहाँ से?
1: नगरी चिचिया से।
0: अच्छा, और क्या करते हैं उपदेश जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक्स सर्विस मैन हूँ इंडियन आर्मी से।
0: अच्छा, और घर पे रह के क्या किया जाता है?
1: जी,
0: घर पे रह के क्या किया जाता है?
1: मैं घर पे नहीं, तो अभी नैन बुकर दे रहा हूँ, ऑनलाइन मिशन डीलर की शॉप करता हूँ।
0: अच्छा, घर पे नहीं रहते हैं लेकिन शॉप कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। और आप यहाँ के कार्यक्रम भी साथ में सुनते हैं, है ना?
1: जी।
0: चलिए, आपकी पसंद पर अब आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: नमस्ते, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा प्रेम सिंह जी, पहले तो अपनी फरमाइश बताइए।
1: जी अभी तो कौन सी भी फिल्म का सुनवा दीजिएगा, लास्ट कॉल रहेगा।
0: नया सुनेंगे या पुराना?
1: जी पुराना सुनेंगे।
0: पुराना सुनेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं प्रेम सिंह जी आप?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, और भजन गाते हैं, है ना?
1: चलिए। हाँ जी, हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, एक ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: अच्छा, और
1: हाँ जी।
0: अब तो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे और आपको

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, और अब दीजिए अपने दोस्त अनुराधा को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: हेलो धर्मशाला,
1: हेलो धर्मशाला, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो धर्मशाला, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी संगीत प्रेमियों का कार्यक्रम गीतों का कारवां में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने रेडियो दोस्त ज्योति के साथ। श्रोताओं, यादें चाहे सुखद हों या उदास, संगीत हर जज्बात को खूबसूरत बना देता है। दिल थाम कर बैठिए और खो जाइए सुरों के इस समंदर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला नगमा।

कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना, प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से उदित नारायण, अनुराधा पौंडवाल के स्वर, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत निर्देशन। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म से ये प्यारा सा गीत। विनोद राठौड़ और सोनू निगम के मिले जुले स्वर हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है, नदीम श्रवण की तर्ज है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। मिलते हैं कार्यक्रम में इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से

0: सकता हूँ एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं विरासत फिल्म से ये गीत। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत निर्देशन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं देव कोहली के बोलों को, सबसे बड़ा खिलाड़ी इस फिल्म में। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे हैं किंग अंकल फिल्म से। इंदिवर का लिखा यह गीत है, राजेश रोशन का संगीत है और लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजें हैं।

इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। सुबह के 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं निम्मो चौधरी की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: ये लोक गीत आपने सुना राजेश कुमार की आवाज में। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आइए सुनते हैं अंजनी ब्यास को इस अगले लोकगीत में।

रविदास की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं अंकुश संदल की आवाज में गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

दीपक कुमार की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वे जनता के समीप थे, जनता के सेवक के रूप में कार्य करते थे। राज्यपाल ने कहा कि वीरभद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका राजनीतिक कद इस बात से स्पष्ट होता है कि वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी कि उनके विचार और सोच हमें अपनानी चाहिए। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए लागत की 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के लिए विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव के आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में 1,963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशनधारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति के संवाददाता।
1: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश, शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना

0: है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों की।

0: राकेश सिंह सलाथिया और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत आपने सुना। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी

0: ये लोकगीत आपने सुना अशोक चौधरी और साथियों की आवाज में।
1: विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी

कलात्मक लगीं। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया।

0: पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है?

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में

0: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
1: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता।

0: क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है।
2: अरे चल ना, जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी।

0: बसंती दीदी, बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
1: अरे
0: दीदी,
1: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
0: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
1: क्या?
0: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
1: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
0: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
1: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
0: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
2: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन

0: बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे चल ना, जल्दी कर ना,
2: जल्दी जल्दी पैर बढ़ा,
3: लकड़ियां काट के लानी
4: है। अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
5: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
4: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
1: वो भला क्यों? हाँ, तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
4: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सब

0: से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
3: चलो
2: चलो
3: चलो,
2: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है।

0: समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
2: पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म खिलौना का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म गोरा और काला में, संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

0: सखी सहेलियों नमस्कार। आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में इस समय मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति। कार्यक्रम सुनो सखी में आप सभी सखियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है, जिसमें बस वही बातें होंगी जो आपके और हमारे दिल के करीब हैं, और सुनाएंगे आपको आपकी फरमाइश का गीत भी। रसोई के काम, बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों से जरा सा ब्रेक लीजिए। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। 01892224391 ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का फोन नंबर। 01892224391। अब फिल्में आपको जल्दी से बता देते हैं जिनसे आप सुन पाएंगे अपनी पसंद का कोई सा भी गीत। बागवान, असली नकली, आराधना, हीना, शेरशाह, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आरजू और दिल चाहता है। तो ये खूबसूरत सफर शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने पहले कॉलर से।
1: हेलो
0: हेलो, कार्यक्रम है सुनो सखी।
1: नमस्कार मैम
0: जी।

0: नमस्कार।
1: शिवानी बोल रही हूँ, मैं कांगड़े गाड़ा सुबह से।
0: जी शिवानी जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम डाटा सुबह से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से।
0: जी आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और शिवानी जी, अपने बारे में कुछ बताएं हमें।
1: मैं बेकरी में शेफ हूँ।
0: जी कहाँ है आपकी बेकरी?
1: मैम डाटा सुबह के पीछे में तो वार्ड है, वहाँ पे डाटा सुबह में पड़ता है।
0: अच्छा, तो ये आपकी खुद की बेकरी है?
1: काम करती हूँ यहाँ पे।
0: जी आप यहाँ काम करती हैं, तो किस तरह चल रहा है आपका काम?
1: मैम बहुत अच्छा चल रहा है।
0: और कितने समय से जुड़ी हुई हैं आप?
1: मैम बेकरी से या रेडियो से?
0: जी बेकरी से बता दीजिए और रेडियो से हम जरूर जानेंगे आपसे।
1: मैम सेम ही है टाइम, 3.5 साल हो गए मेरे को।
0: जी ये तो हमने जान लिया कि आप बेकरी से जुड़ी हैं 3 सालों से। और आप बताइए कि आकाशवाणी धर्मशाला से कब से आपका लगाव है?
1: मैम सेम टाइम।
0: सेम टाइम,
1: हाँ जी
0: ठीक है। और आज की फरमाइश कौन सी है आपकी?
1: मैम बागवान मूवी का सुना दो कोई भी।
0: कोई सभी गीत?
1: हाँ जी
0: ठीक है। शिवानी जी, आपके गांव तक हम पहुंचा रहे हैं बागवान फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम।

0: जी
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: नाम मेरा दर्शना कुमारी मैडम जी।
0: जी दर्शना कुमारी जी, कहाँ से बात
1: हाँ
0: कर रही
1: जी,
0: हैं?
1: हम कर रहे हैं पंजाब से, हरसे मानसर मुकेरियां से।
0: जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: हाँ जी,
0: सबसे पहले अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दें।
1: आरजू फिल्म का सुनना मैंने मैडम।
0: आरजू फिल्म का कोई सभी?
1: हाँ जी, पुरानी
0: जी ये पुरानी आरजू है।
1: आरजू का
0: जी जी
1: बेदर्दी बाल माफिस को मेरा दिल याद करता है
0: जी ठीक है। और अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: मैडम जी। आज गर्मी बहुत है, धूप
0: अच्छा जी
1: निकली हुई है जैसे धर्मशाला में निकलती है ना ऐसे,
0: जी मतलब बिल्कुल
1: लेकिन
0: साफ साफ धूप है।
1: हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: जी फिर क्या कर रही हैं इस मौसम में?
1: जी।
0: फिर क्या कुछ किया जा रहा है इस मौसम में?
1: इस मौसम में हमारी शॉप है मैडम जी।
0: जी
1: हाँ जी, फुटवेयर की।
0: फुटवेयर की है और
1: हाँ,
0: लेडीज
1: बैठे हुए
0: है।
1: भाई,
0: जी
1: फोन मिलाया आपका।
0: जी और कार्यक्रम सुन रही हैं साथ में।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो ये जो आपकी शॉप है इसमें आपने लेडीज फुटवेयर रखे हैं या सभी प्रकार के हैं?
1: सभी प्रकार के मैडम जी, बच्चों
0: जी और कैसा चल रहा है काम
1: के
0: आपका?
1: जेंट्स, बच्चों के लेडीज, ठीक
0: जी बहुत अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है काम आपका?
1: चल रहा है मैडम जी।
0: जी और इसी तरह आपका काम चलता रहे और जुड़े रहें आप हमारे साथ, सुनवाते
1: हाँ
0: हैं
1: जी,
0: आपकी फरमाइश का ये बहुत ही
1: थैंक यू
0: खूबसूरत
1: मैडम जी,
0: गीत।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी धन्यवाद।

0: साथ में?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो ये जो आपकी शॉप है, इसमें आपने लेडीज फुटवेयर रखे हैं या सभी प्रकार के हैं?
1: सभी प्रकार के मैडम जी।
0: जी और कैसा चल रहा है काम आपका?
1: जेंट्स, बच्चों के, लेडीज।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है काम आपका?
1: ठीक चल रहा है मैडम जी।
0: जी और इसी तरह आपका काम चलता रहे और जुड़े रहे आप हमारे साथ, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी धन्यवाद।

0: मौरी नूरपुर से।
1: जी साक्षी जी, हमारे नियमित और पुराने श्रोता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: हाँ जी धन्यवाद मैम जी। बता दीजिए कि फिल्में कौन कौन सी हैं।
1: जी तो आपने नहीं सुनी है फिल्में?
0: नहीं,
1: अभी अभी आपने रेडियो ऑन किया है।
0: हाँ जी,
1: तो आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो फिल्में अब हमारे पास शेष हैं उनके नाम है असली

0: की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
3: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते जी, बहुत देर से आप हमें कॉल कर रही हैं।
3: हाँ मैडम जी, लग नहीं रहा, बहुत ही देर है मैडम जी।
2: तो अब कैसा लग रहा है, आपकी कॉल कार्यक्रम में लग चुकी है?
3: हाँ मैडम जी, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी।
2: जी, अब अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रही हैं?
3: मैं तानिया बोल रही हूँ मैडम जी, जम्मू से।
2: जी सानिया जी, जम्मू से।
3: हाँ जी
2: जी, सबसे पहले अपनी फरमाइश आप हम तक पहुँचाएं।
3: कौन कौन सी फिल्में मैडम जी मैंने अभी चालू किया?
2: जी, फिल्में जो अब हमारे पास हैं वो हैं असली नकली, आराधना, शेरशाह और मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी।
3: आराधना का सुना दो मैडम जी।
2: कोई सभी गीत सुनेंगी या कोई

0: आवाज पसंद है आपकी?
1: कोई भी सुना दो मैडम जी, अच्छा सा।
0: ठीक है, बिल्कुल अच्छा सा सुनाएंगे और बहुत अच्छे गीत हैं इस फिल्म के।
1: आप सुना दो मैडम जी, कोई भी सुना दो अच्छा सा
0: जी, और आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्या करती हैं?
1: बस मैडम जी, बच्चों का खाना बनाओ और अपने घर की सफाई रखो, और गर्मी बहुत है, बच्चों को मैं बाहर नहीं जाने देती गर्मी में।
0: जी,
1: हाँ मैडम जी,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा करती हैं आप, क्योंकि गर्मियाँ सचमुच बहुत हो चुकी हैं और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से हमने बचना है।
1: हाँ मैडम जी,
0: और क्या कुछ करना अच्छा लगता है?
1: बस घर का काम करो
0: जी
1: और बच्चों को संभालो
0: जी
1: और आए जाए को देखो।
0: जी तो इसमें आप बहुत खुश हैं
1: हाँ
0: और
1: मैडम
0: अच्छा
1: जी,
0: लगा जानकर कि आप खुश हैं अपने इस काम से।
1: हाँ हाँ मैडम जी, बहुत ठीक है।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले कुछ विज्ञापन है वह सुन लेते हैं।
1: ओके
0: जी, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

जिन सखियों की कॉल आज के कार्यक्रम में हम शामिल नहीं कर पाए हैं, वह अगले मंगलवार हमसे फिर जुड़ें। और जिन सखियों की कॉल आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की है, वह दो हफ्ते बाद हमसे जुड़ें। चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम को आपके घर द्वार तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। आज्ञा दीजिए प्यारी सखियों, नमस्कार।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर

0: आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए $23 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, is helping around 74 lakh farmers in the country. He said this while launching NAFED's auction portal, nafix.in, at Atal Akshay Urja Bhavan in New Delhi. Mr. Shah also paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his death anniversary. The Home Minister praised Dr. Shyama Prasad Mukherjee for being an advocate of nationalism, cultural nationalism and Indian culture.

0: The Special Investigation Team, SIT, probing allegations of embezzlement of donations received by the Ram Temple in Ayodhya, has submitted its preliminary inquiry report to the Uttar Pradesh government. The report was submitted by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad. Officials said the investigation is still underway and further facts are being gathered. The UP government constituted the SIT on the 13th of this month following a request from the Temple Trust after allegations surfaced regarding the misappropriation of donations received at the Ayodhya Ram Temple. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a review meeting in New Delhi in view of the El Nino effect on the weather and its impact on agriculture. The meeting was attended by the agriculture ministers of several states, secretaries, district collectors and officials. Discussions focused on necessary preparations in the event of low rainfall, alternative crop plans and protecting the interests of farmers. Union Minister of State for Minority Affairs and Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, George Kurian, has resigned from the Union Council of Ministers. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Mr. Kurian with immediate effect. The Enforcement Directorate ED is conducting searches at 18 premises in Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore and Madurai in connection with the alleged teacher recruitment exam manipulation case. The ED said the action is based on an FIR registered by the Central Crime Branch in the year 2017. It added that the police had filed a charge sheet in the case in 2021. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 525 points to 76,570, while the Nifty shed 172 points to 23,931 when reports last came in. Sectorally, metal, IT and banking stocks led the declines, while pharma and healthcare stocks witnessed buying interest. In football, FIFA World Cup, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In another match, Norway defeated Senegal 3-2 in their Group I clash today at the New York Stadium and sealed their progress into the round of 32. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर. दोपहर के 1:10 हुए हैं. आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम.
2: इस गीत को जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है. छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना. तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर. एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदे और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं. दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है. टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है. बहुत सुंदर. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है. जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं. इस भीगे हुए रुमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है. बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं. ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है. पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है. बहुत सुंदर. तो हम आपको बता दूं, ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था. किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एम जी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी. हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी

का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ओला कूड़ा ओलापुरा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का ये रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

लता मंगेशकर और मन्ना डे को आपने सुना। फिल्म का नाम था श्री 420। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है, या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे सादे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहाँ बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियाँ छतरियाँ लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहाँ छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुनाई नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है, यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके, और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे, तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपकी कुछ गीत हमारे गीतों से, हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य, ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है। और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं, परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो, भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया।

चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, एसडी बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

जी, टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं। आप बताइए ना, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहाँ 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदें आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद हैं उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता

दिखाई देता है, क्या बात है। हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है, जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफ़र प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी, बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज़्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे। आपने जो बात लिखी है, पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिज़ाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी, ताकि श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़ें। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफ़र ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफ़र के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि बे आज कुछ ऐसे गीत हैं जहाँ इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों, तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नज़दीकी, एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफ़र में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज़ मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रहली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं। हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नज़र नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहाँ पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियाँ बोल दीजिए आप प्लीज़। क्या लिखा है आपने, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सकें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है।

कल ही मुंबई आई हूँ। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई। वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना? बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रख कर भूल आया हूँ और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब मैं कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने नाम अपने अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए। तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफ़िन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुँचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है। और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है, लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि। लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ

अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार एमपी में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में, लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज़ बरसात 2 घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मज़ा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज़ बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मज़ा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज़्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफ़र कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की भूल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़ें, ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाज़त, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है। लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए।
1: मधुबन

की जिद करो, और जो ना बन सको सूरज तो जुगनू बनकर, छोटा सा सूरज अपने अंदर उगाकर, अंधेरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनो। जुगनू जब रात की काली चादर पर टिमटिमाना शुरू करते हैं तो अक्सर अंधेरे में भटके को उम्मीद के सूरज तक पहुंचने का एक सिरा मिल जाता है, और वो जुगनू अपनी रोशनी खोने तक उस भटकते प्राणी की उंगली पकड़ उसे सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

हमारे सपने मन की मुट्ठी में रखे जुगनू ही तो हैं। माना जुगनू सूरज नहीं हो सकता और ना सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू हर सूरज की मुट्ठी में है। हर जुगनू अपने अंतस के सूरज से चमकता है, वो चमकता है फिर बुझता है और फिर चमकने लगता है। निरंतर ये क्रम जारी रहता है। जुगनू कभी सूरज की तरह तेज ना चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता, वो तो बस अपने को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने आसपास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी रखता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है।

0: सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूड जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारी

0: मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने

0: इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। SIT के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दबा छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुपने

0: कयामत मैं हूँ बला, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत SN त्रिपाठी का है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

छुप छुप जा।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: लता मंगेशकर की गाय फिल्म अजी बस शुक्रिया के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब खत्म होता है।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचारों का। 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान व अभियांत्रिकी, व्यापार व उद्योग, औषधि और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला शहर में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुनियोजित शहरी विकास और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में वाहनों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण यातायात नियंत्रण और पार्किंग प्रबंधन गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने आज शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में चालक परिचालक यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने पर सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के में हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, विकास कार्यों की धीमी गति

0: और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहा है। वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री आवास ओकओवर से शुरू हुई ये मैराथन सीटीयू मार्ग से होते हुए इंदिरा गांधी खेल परिसर में संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने युवाओं से राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान प्रदेश के विकास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है कांगड़ा जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं विपिन शर्मा, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
0: जून माह में कांगड़ा जिला लोकतांत्रिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए ग्रामीण विकास और जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार की रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। चंडीगढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया है। सरकार, प्रशासन, मीडिया और समाज के संयुक्त प्रयासों से नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई हुई है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पुनर्विकसित फवारा चौक और 11,90,00,000 रुपए की लागत से निर्मित ई बस चार्जिंग डिपो व अनुरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही धर्मशाला में 3 नए इंट्रासिटी ई बस मार्गों को मंजूरी दी गई। फवारा चौक के पुनर्विकास से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। धर्मगिरी पठियार स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने महाराणा प्रताप को त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठंडल स्थित सर्वधर्म पीठ तपोस्थान गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 420वें शहीदी दिवस पर 5 दिवसीय धार्मिक समागम का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया। उन्होंने नवनिर्मित दरबार साहिब भवन का उद्घाटन कर प्रदेश व देश की सुख समृद्धि की कामना की और गुरु साहिब की शिक्षाओं को आज के समाज के लिए प्रासंगिक बताया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये संयंत्र सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। यहां फ्लेवर्ड मिल्क, दही, लस्सी, पनीर, मोजरेला चीज, योगर्ट और खोआ जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

0: डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 44 से बढ़कर 352 हो चुकी है और दूध संग्रहण 6,200 लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 24,000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गया है। धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला व सुधार उत्सव में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि टेली लॉ और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहलें दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही हैं। कार्यक्रम में न्यायिक सुधारों और विधिक जागरूकता पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जल निकासी व्यवस्था, जेसीबी मशीनों की उपलब्धता, खाद्यान्न भंडारण तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा। कांगड़ा जिले के 7 उपमंडलों में राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और धार्मिक स्थलों पर आपदा जैसे विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की तत्परता व समन्वय क्षमता का परीक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर में 9वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। विश्वविद्यालय को शैक्षणिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में देश में 4था स्थान मिला है। कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने इसे विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। धर्मशाला में आयोजित विशाल विधिक साक्षरता शिविर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विक्रमनाथ सहित देश के कई प्रमुख न्यायविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संविधान, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के संकल्प को दोहराया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
3: बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in, जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है। कई बुजुर्गों को पढ़ने में आँखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है, तो उनके लिए ऑडियो बुक्स सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।

0: 5, 6, 7 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
0: बिल्कुल। अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
1: और आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
0: बिल्कुल। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है तो उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के ज़रिए या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
0: बिल्कुल। बहुत जरूरी भी है इस चीज़ के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फ़ोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती। नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना हो, हाँ
1: खुद ही फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है
0: जी।
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के

0: भी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी ख़राब परिस्थिति को और भी ख़राब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में से ऐड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेज़ी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है। और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: बिल्कुल पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है। लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: बिल्कुल। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है। क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम
1: बिल्कुल
0: कर रहे हो, है ना?
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए। जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा संगीत सुन लेते हैं। अगर नजरों से

0: मैंने कहा
1: मिलती है अगर नजरों से नजर, शर्माते हो क्यों।

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए हाँ. कि भाई आग में घी डालने घी वाली बात है.
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है. इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं. अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है. बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना.
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा. चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए. शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है.
0: बिल्कुल. और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आइए लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना. ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं तो कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं. और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज़्यादा है.
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज़ को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीज़ें ना आग में घी डालने का काम करती हैं. और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं.
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहाँ पर वहीं तक सीमित
1: रखे, समझाने जी करें. ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे. तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का.

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां।

0: बजती है और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
4: अब बताओ तुम क्या करते?
3: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती है, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करनी
1: है। बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पर सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूँ चकिया धरना ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुड़ जाता
1: बिल्कुल
0: था।
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था,
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्यौहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसकी उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मज़ा है। और गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने वाली थी?
1: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मज़ा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी
1: ये
0: भर जाए।
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी, सभी के घर आंगन, जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहाँ पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहाँ पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे, आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर के करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं

0: तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं, वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है। और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल
0: लिखते
1: हैं? हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में। बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे, गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो, और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियाँ सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियाँ सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो, एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे ज़माने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहाँ धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर

0: बैठते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी। सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूँ साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के
0: कर रहे
1: समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज़ है वहाँ पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मज़ा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नज़रों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मज़ा है जो है आज भी।
1: और हर मौसम का, हर मौसम का, चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मज़े करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहाँ जहाँ धूप जा रही है ना वहाँ वहाँ पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब, मतलब खान पान से लेकर
1: जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का।
0: आनंद उठाते हैं गीत,
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया।
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं। एक बार आप पुनः से सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर मनसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है

0: इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: बेखबर बेखबर।
2: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आज़मी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है, घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आज़मी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
2: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
3: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
2: जी,
3: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
2: जी।
3: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
2: ओहो,
3: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने, तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम ज़मींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गईं
2: जी।
3: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
2: जी,
3: ये सब जो एहसास थे ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
2: जी जी।
3: ये 1984 का ज़माना था।
2: कितने बड़े थे आप?
3: मैं 71 में पैदा हुआ।
2: ओह, तब तो बहुत छोटा।
3: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस ज़माने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का ज़माना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे, तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
2: काम क्या कर रहे थे?
3: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस ज़माने में।
2: अच्छा।
3: जो पान में सुपारी खाई जाती है वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
2: जी, जी, जी।
3: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
2: हाँ।
3: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
2: रेडियो का स्विच ऑन कर
3: दिया ऑन, और

0: जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात,
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाय कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
1: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था,
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम हुआ करता था।
0: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गज़ल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गज़ल मैंने उसी दिन कही और उसके बाद से फिर गज़लें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो ज़ाय कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना,
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो
0: बिल्कुल,
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है
0: जी।
1: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का।

0: हाँ वो सुना दें आप, मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा। तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस
1: जी
0: तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है। तो
1: तो वो गजल याद है?
0: गज़ल तो याद नहीं है
1: हाँ
0: क्योंकि मैंने वो ज़ाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें
1: जी
0: तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गज़ल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा
1: खून
0: जिस्म
1: से
0: ये शकील अपना।
1: क्या बात है?
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गज़ल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: वाह वाह क्या बात है। तो
0: बिल्कुल
1: मतलब रेडियो ने आपकी गज़लों की दुनिया की शुरुआत की, तो मतलब कह सकते हैं कि

0: है जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
1: जी
0: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
1: जी
0: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके बाप
1: माँ से
0: के।
1: मिलता है
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है। तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस
1: चल
0: था।
1: रही थी बचपन से।
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
1: जी
0: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
1: जमा
0: थे,
1: हो रहे थे,
0: और
1: क्या
0: एक दिन
1: बात
0: वो
1: है।
0: फट गया
1: ओहो
0: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
1: जी
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
1: जी
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ़ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
1: जी
0: इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
1: जी
0: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं, वो जो
0: महसूस करते
1: खरोचे
0: हैं।
1: होती है वो खरोच आपको
0: हाँ
1: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो
0: जी
1: आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी
1: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे,
1: वाह वाह वाह
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज़ है,
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को,
1: जी
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है।
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई
0: तो
1: बार,
0: दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की ज़बान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत।

0: नसीहतें कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए,
1: नानी की मोहब्बत है
0: बताइए कोई किस्सा
1: याद
0: बताइए
1: है।
0: नानी
1: मैं
0: का।
1: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
0: क्या बात है, ओह
1: हाँ, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एकाध वाकया ज़रूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। तो मेरी माँ को टीबी था, उस
0: ओह
1: ज़माने में टीबी लाइलाज था,
0: जी,
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो। और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से। और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी
0: जी
1: बहुत,
0: जी
1: और मैं पढ़ने में तेज़ था शुरू से।
0: हाँ
1: एक आध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था, जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
0: तेज थे।
1: बहुत तेज़ था मैं। हाँ
0: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे
1: हाँ, सूरत में
0: जी,
1: जी
0: सूरत में।
1: जी
0: तो वो क्या वाक्या है, ज़रा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था,
0: जी
1: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था वो, बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की,
0: जी
1: है
0: शीन
1: ना।
0: काफ निज़ाम भी आए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: उसमें।
1: शीन काफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, वो उसका संचालन किया था।
0: जी
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
0: बिल्कुल, कुंडली आपकी पता है नहीं लेकिन अभी श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी बातें
1: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
0: जी
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीन काफ निज़ाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी
1: सब।
0: जी
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूँ समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी
1: संदेशे आते
0: हिट
1: हैं, है
0: गाने
1: ना,
0: गाते रहते,
1: आए
0: बिल्कुल
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही ज़माना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो, प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फ़ोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी,
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था। और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई, कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है,
0: जी
1: बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
0: हाँ
1: दूसरे शहरों
0: उनको
1: से आए
0: बाद में
1: हैं
0: रख।
1: और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं।

0: अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरी था।
0: हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहाँ पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर एक नावल लिखा है जो दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो करेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस ज़माने में मुशायरों में तूती बोलता था,
1: बिल्कुल,
0: और ख़ास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी
0: उनको।
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी,
0: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नज़र थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए,
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह,
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नज़र कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, हिमाकत नहीं करता,
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर

0: हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नज़र कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था, और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला। और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया है।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब ख़त लिखते हैं, खतूत का ज़माना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी ज़माना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं
1: जी,
0: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने जी।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं, और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई मुंबई आए, तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी, और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब ज़रा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस ज़माने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और ख़ुद भी वो कविता लिखते हैं और गज़ल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात
1: हाँ,
0: तो नहीं पता थी
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है,
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत
1: नावेल
0: पढ़ते
1: और
0: हैं
1: कहानियाँ
0: जी।
1: बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गज़ल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फ़ैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गज़ल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गज़ल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के ज़रिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफ़र है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़ ये
1: भीड़ और
0: सब
1: 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी, और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं ख़ास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो

0: पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था, तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे, तो
1: और वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया, और जो पहली फिल्म बनाई उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहाँ से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूँ, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस, और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं, और कुछ गलियाँ ख़त्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहाँ जाता हूँ मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: हाँ
1: व्हाट्सएप नंबर।
0: हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी जी
0: है ना, और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में ज़रूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये
1: जी
0: जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने,
1: जी
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गज़ल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने
1: जी
0: गाई थी, उस गज़ल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली।
1: जी
0: उसके बाद जो है ये रिलीज़ हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें।
1: जी क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है,
1: जी
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का, अभी जिक्र
0: हाँ
1: किया आपने,
0: हाँ हाँ
1: वहां
0: हाँ
1: पर जगजीत सिंह साहब ने एक
0: जी
1: गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज़
0: हाँ
1: थी।
0: जी हाँ
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गज़ल के मामले में गज़ल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी हाँ,
1: है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गज़ल सिंगर हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें
0: हाँ,
1: उस गाने में।
0: लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे छूता है गज़ल सिंगर, वो हैं जगजीत सिंह साहब, और वो गज़ल बड़ी फेमस थी, तो उस गज़ल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे ज़िद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गज़ल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात कर रहे हैं।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं, नहीं मतलब वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नज़र आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज़ मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज़ चाहिए मुझे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी, वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है
1: जी
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन अब वो बाद में फिर वो वापस आता है।

इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है

0: तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: हाँ।
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: मतलब
0: अभी
1: है?
0: भी जैसे तू है, है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है, तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र। ये पहली जो गज़ल थी ये फ़ायज़ अनवर साहब ने लिखी थी, फ़ायज़ भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गज़ल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए। तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान।

0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जाँच अभी भी जारी है। गुजरात के राजपीपला में सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और उनके पत्नी समेत 8 अन्य लोगों को नवंबर 2023 के एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली का आरोप था। तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाज़ों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बंटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दामदिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन पर 2-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Ministry of External Affairs today informed that 10 Indian-flagged vessels are still in the Persian Gulf region. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said that since the signing of an MOU between the US and Iran, 11 Indian-bound vessels have crossed the Strait of Hormuz. On Qatar's explosion, Mr. Jaiswal said that India is coordinating closely with the government of Qatar to expedite procedures related to the repatriation of the mortal remains of the deceased.
2: Very unfortunate deaths of 12 Indian nationals. Several others also died of other nationalities, but we lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I'm told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe, talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
1: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July as well. Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, today said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. Dr. Lahiri said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. The Vice Chairperson added that India's exports reached 1.4%.

सायंकालीन भजनों में सबसे पहले आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में काजल फिल्म से ये भजन। भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सायंकालीन भजन।
1: रामचंद्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणा विराम सीता मुखाम्बरोः चंचरिका

श्रोता, इसी के साथ भजनों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच।

0: दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां पर इस वक्त आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवा मंच का। युवा दोस्तों, रोज की भाग दौड़, पढ़ाई का प्रेशर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियों का स्ट्रेस और अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने की होड़ के बीच हम अपने बारे में सोचना भूल ही जाते हैं। हमें कई बार ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमें क्या पसंद है या फिर क्या हमें नापसंद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सभी आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे और आपको थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं। जी हाँ, आज युवा मंच में आपको करवाने वाले हैं सैर सपाटा। लेकर चलेंगे किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर, जहाँ आप अपने आप को एकदम फ्रेश फील करने वाले हैं। और इस सब के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर और सुनते रहना होगा प्रोग्राम युवा मंच।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

क्या है?

0: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को।

0: तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, युवा मंच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। युवा दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता किसे पसंद नहीं है। घने जंगल, ऊंचाई से गिरते झरने, शांत बहती नदियां और अटखेलियां करते हुए पशु पक्षी हर किसी के मन को मोह लेते हैं। तो चलिए आज हम भी सैर सपाटा करते हैं ऐसी ही एक जगह पर, जहां जाकर आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ये पार्क मुख्य रूप से लुप्त प्राय बंगाल टाइगर्स और विशाल जैव विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। युवा दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। आगे चलकर 1957 में इसका नाम बदलकर महान प्रकृतिवादी लेखक और पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया था। जी हाँ, इनके सम्मान की याद में जो है वो इसका नाम रखा गया था। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जहाँ 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और ये पार्क लगभग 520 वर्ग किलोमीटर के कोर क्षेत्र में फैला हुआ है। कार्यक्रम में आपसे और भी ढेर सारी जानकारियां हम साझा करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपका मनोरंजन गीत संगीत से करना बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सैर सपाटा करवा रहे हैं और आपसे बात हो रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। जी हाँ, ये पार्क घने साल के जंगल, घास के मैदानों और रामगंगा व कोसी जैसी नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ के अलावा हाथी, हिरण, तेंदुए, भालू और 600 से भी अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए ये एक बेहद ही लोकप्रिय जगह है। युवा साथियों, आपको बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने शानदार वन्य जीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। घूमने के लिए मुख्य आकर्षकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाघ देखने के लिए मशहूर सफारी जोन, कोसी नदी के बीच स्थित गार्जिय देवी मंदिर, प्रकृति की गोद में बसा कॉर्बेट वाटरफॉल और कॉर्बेट म्यूजियम मुख्य आकर्षण है। युवा दोस्तों, यहाँ जंगल में रोमांच और बाघ व अन्य जानवरों को देखने के लिए पार्क में कई जोन में जो है इस पार्क को बांटा गया है और यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करती है।

युवा साथियों, अगर आप यहाँ के वन्य सफारी में अगर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय 15 नवंबर से लेकर 15 जून के बीच का रहता है। वहीं वन्य सफारी और पार्क के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रहने के लिए बुकिंग करना अनिवार्य है और ये बुकिंग आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका रामनगर तक की यात्रा करना है। रामनगर यहाँ से का मुख्य प्रवेश द्वार और केंद्र बिंदु है, जहाँ आप ट्रेन, बस या फिर अपनी गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं। वहीं यहाँ के आसपास के अन्य मुख्य आकर्षक स्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल और नैनीताल जैसे आसपास के पहाड़ी इलाके कार्बेट के जंगली भूभाग से बिल्कुल अलग और मनमोहक वातावरण प्रस्तुत करते हैं। पहाड़ों की ताजगी भरी हवा और वहाँ के निवासियों का गर्म जोशी भरा मेहमान नवाजी से मिलकर ये अविस्मरणीय अनुभव आपको प्रदान करते हैं। तो अगर आप भी सैर सपाटे के मूड में हैं तो आप इस जो है वो नॉलेजफुल प्लेस की जो है वो सैर पर जा सकते हैं और अपने मूड को बिल्कुल फ्रेश फील करवा सकते हैं।

यो साथियों, आज की यो मंच कार्यक्रम में बस इतना ही। इस प्रोग्राम को अब यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाजत। कल इस प्रोग्राम को इसी वक्त सुनना ना भूलें। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा शाम 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ और 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। इसके अलावा रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं। 7:10 पर किसान बागवान श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम और 9:30 पर आनंद लीजिए हिमाचली लोक गीतों के कार्यक्रम धाम गीतादि का। रात्रि 10:30 पर सुनना ना भूले सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोतो, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में जनजातीय विकास व बागवानी विभागों की बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में चालक परिचालक यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे।

0: फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
1: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
2: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
1: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने आज शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं और यहां पर लेकर हाजिर हो गए हैं हम प्रोग्राम सुरमई सांझ। जी हाँ, आज की इस शाम को और भी सुरीली और सुरमई बनाने के लिए लेकर आए हैं हम कुछ बेहतरीन से फिल्मी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कटी पतंग फिल्म के इस गीत से। तो प्यारे प्यारे गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। सुनिए प्रोग्राम सुरमई सांझ।

जी हाँ, ये ढलती सी शाम, ये सरगोशियाँ किसी की याद ताज़ा कर जाती है, मानो अभी अभी कानों में कोई कुछ गुनगुना के चला गया हो। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरमई सांझ। प्रोग्राम का अगला सॉन्ग हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले से।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सुरमई सांझ में सुरों की तान छिड़ी है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद फिल्म से।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से सुरमई सांझ प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं, और यहाँ से हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे गीत जो आपके दिलों को सुकून पहुँचाते हैं और राहत का एहसास दिलाते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक गीत सुनते हैं अभिलाषा फिल्म से।

सुरमई सांझ प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे गीत जो आपके जज्बातों को बयां करते हैं। ऐसा ही एक गीत हम अब आपको सुनवाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हमजोली फिल्म से।

चलिए श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुरमई सांझ कार्यक्रम को संपन्न यहीं पर करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही बनी रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम।

0: किसान साथियों संजय ये बेला चे प्यारा दिया लोक गीत जड़ा है जड़ा कि मैं ये बोलगा ना किसान मित्र जी
1: हाँ जी
0: भई साढ़े लोक गीत जड़े न साढ़े घर दियाँ जड़ियाँ माड़िया मोटिया समस्या ने तिना पर भी नज़र जड़ी से दौड़ाते हैं
1: हाँ।
0: पर गल ही है बई हाँ जो मिली जुली के अपने परिवार जो अगे बधाना लड़ाइयाँ हर घर च कोई घर ऐसा नहीं है जिथे लड़ाइया नहीं होनी लेकिन फिर भी इतने सुलझाई के प्यारे ने बैठी के जरा सा गलबात करी के इन्ह कमां जरा सा अगे बधाना चाहिए कने मैं तो यह बोलगा भी बगानिया माँ बाबा या अपना माँ बाप समझन
1: हाँ,
0: लड़ाइया ना हो
1: बिल्कुल दिखा घरे बिच जड़ा सह जियां जियां तो नोक झोक तो हो ही जांदी है ना, लेकिन सह एक कहावत भी है ना कि भाई जिन्हां घर चलाने ते ना प्रांदुआं दे बन्न पाने ना।
0: हां बिल्कुल गुत्तां दे बन्न पाने
1: हैं
0: तां गल ही है भी अजकल जियां कामकार जियां अजकल वधिया ही हुंदा ना किसानां दे घरे च दिखा हुण गाईं भी हैं खेतीबाड़ी भी है घर है जड़ा भी कामकार हुंदा घरां दे सब भी हैं, लेकिन जलू कम्मिया जोर पौंदा तां कई वारी कुछ आदमी घरे च ऐसे हुंदे
1: जिन्हें
0: अटाला टेला कहना मत्थे धूड़ आई जाते इन्हों के, लेकिन सारा परिवार जल मिली जुली के काम करगा कहना मैं यह भी बोलगा भी जड़े भी सदस्य कुछ व्यवहार अलग तरीके का हो जाता तिन्हें तिन्हें चाहिए कि अपने परिवार जोड़ने ताई लोग प्राण नहीं दें
1: बिल्कुल हाँ जी
0: अपने परिवार जोड़ी के रखने ताई जरा सा साथ जरा सा अपने परिवार देना चाहिए कहना
1: हाँ जी।
0: ये जड़ियाँ

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: किसान साथियों, संजय जी बेला प्यार दया लोग गीत जो पसंद आया होना कने किसान मित्र जी, इस लोग गीत जो एक सलाह भी है।
1: हाँ
0: बी खेतीबाड़ी का काम कमाना है तो जी सलाह ही दिया करते ने, मांग होवा करती है तिने आजी आजी करते रहे
1: हैं। बिल्कुल
0: किसान साथियों, पट्टियां पूरी हरिया रहनिया कने बढ़िया उर लगना कने गां की गल गां रही
1: गां रही है।
0: तो यह गलबात हाँ संजय बिल्ला इन्ह लोग गीता सुन के जी थकान हल्की फेरी है।
1: हाँ जी
0: कने हूँ गां हाँ अगली गल करनी अपने जरा समय आवा करता हरे चारे के बारे च।
1: बिल्कुल
0: दिखा कई तरह का किसान साथियों अजकल हरा चारा जरा हाँ चरी बाजरा तो बांधे बांधे है
1: ना,
0: लेकिन मक चारा हो या मोटे टंडे वाले कई तरह के घा जड़े से आवा करते कने अजकल गां बरसाती जो किसान मित्र जी बतेरा घा जड़ा सा प्राकृतिक तौर पर भी उगदा है।
1: उगदा बिल्कुल हाँ जी।
0: तो अपने पशु ये बरसाती समय जड़ा है सह सेहता बनाने का भी है
1: जी जी।
0: लेकिन एकदम जालू हाँ पशु अपने सुके चारे त्यारे चारे च लींदे ना तमी पशु च कई बार मुश्किल जड़ी सह पैदा हो जाती।
1: बिल्कुल
0: तो हाँ अपने किसान साथियों ने आग्रह करना चाहेंगे कि बई जल भी तुसा पशु हरा चारा खवाना शुरू कर दें तो ओली ओली तुझे बदलाव करा। एक टाइम तुझे सुक्का रखा कने एक टाइम हरा दिया या तुम कुतरी के तीसियो
1: मिलाई के
0: सुके चारे च मिलाई के तहत तीसियो खुआन तो साढ़े पशु च कोई मुश्किल जड़ी से नहीं आती। खास करके दुधारू पशु जड़े हैं ना तिना च अगर छिबरा लगने की नौबत आई है तो फिर मुश्किल हो जाती, दुध च घाटा हो जाता कने हर किसान साथी जरा आर्थिक कहानी भी जी चुकना पौंदी।
1: हाँ जी जी दिखा हूँ इन दिनों च परजीवी जी हो कोई जी मक्खी मच्छर हो चिचड़ पेथड़ हो भी बड़े तंग करते पशु है ना। तो जितने यहाँ पशु खुराक पानी उतना था तिना खून ही चूसी
0: जाते बिल्कुल।
1: तो इसते भी जड़ा सा बचाव जड़ा सा करना समय समय पर जियाँ कि
0: फिनाइल
1: यहाँ पशु जड़ा सा नहलाना भी है ना, फरनेले का तुम तो हाँ उपर कपड़ा पोचा मार दिया ना, इससे मक्खी नहीं बहनती कने जितने भी जियाँ पिस्सू हो या ये भी जड़ा सा बिल्कुल दवाई का जड़ा सा प्रयोग करना ना।
0: बिल्कुल तो हाँ सोलह ने गल गलाई कने संजा प्यागा जड़ा सा धूं माड़ा मोटा पाई के तो हाँ मक्खी मच्छर अपने पशु धन से दूर करी सकते हैं।
1: हाँ जी जी।
0: कने सेहत बनाने की गल आई तो यह समय जड़ा है सह हरा चारा जल पशु बड़ी रुचि ने खाँदा है तो बड़े अच्छे तरीके ने तो हाँ समयबद्ध तरीके कने तुम हरा चारा खवा ताकि सब पशु अपनी सेहत जी सब पकड़ी सके है ना। तो ये गल्लां जिहड़ियां ने आने वाले समय च जिहड़ा साडे किसान भाई जरूर ध्यान च रखन कने एक बारी फिर ते अहां अपने किसान साथियों रौनकां दी तरफ लेके चलना कने सुनाना है प्यारा दिया लोक गीत
1: जी।

0: किसान साथियों, इस प्यारे दे लोग ने संझा की रौनक जड़ी सा और बधाई है। कने इस कन्ने कन्ने दिखा किसान मित्र जी, बई गल ही है बई अजकल जड़ा खेतीबाड़ी का काम चलिया है, तो इस विच क्या कि पानी च सारे पट्टियां जड़ियां सब पानी ने भरोई हैं, कई तरह के जीजू कंडू जड़े हैं सह सुकिया की तरफ नठते हैं। हाँ। तो साढ़े रस्ते जड़े हैं कई बार तिना च भी हमेशा जलू अगर तुह खेतरे ते लेट हो जाते हैं तो जरूर कोई टार्च वगैरह का प्रबंध जरा सा होना चाहिए, क्या कि इन्ह जीव जंतु है वह भी रहने का ठिकाणा तो चाहिए सुकिया रहने का। तो कई बार ये रस्ते चुड़े च आई जाते हैं, तो इससे बचने का एक ही इलाज है कि असा हमेशा टार्च वगैरह लेके चलिए
1: चलिए। कहना दूसरी गल दिखा भाई, जियाँ कि अज अहाँ जिक्र करा करते जी खरीफ की मुख्य फसल धाना का कम चल रहा है ना, तो पानिए की भी जेखा बड़ी जिसी बोलते ना घुलाटी ने देना रही है ना, तो जियाँ कई कई बार जियाँ नेर कोई चले हों कि मैं नेर नेर पानी छड़ लैना बन लैना जितों से पानी
0: खिंडा
1: टप होंगे ना, तो इसते भी जरा थोड़ी सावधानी जी सह रखनी है, तुह अपने कमा जो जरा सह कमा लेकिन अपनी संभाल भी जरा सह रखा ना।
0: बिल्कुल तो ठीक लाया। कने ये टाइम एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि ये टाइम जरा ना किसान मित्र जी,
1: हाँ
0: जड़ी फसल तुह चाहते ना लाल चौल चाहते अपन खेती बाड़ी तो लाल चौल बा तुह कस्तूरी बासमती है परमल है जिस भी किस्म का तुह अपना धान आने वाले टाइम खाना चाहते हैं सह तुह धान उगाई सकते हैं
1: लगा कने थोड़ा थोड़ा तो अह ये बोलते कि एक ही जरा तरह का नहीं उगाना है थोड़ा अलग अलग जड़ा सह ना
0: मिश्रित खेती जी अह गलाई सकते कने अपने पुराने बीए संभाली के रखा पवें एक पट्टी बा दो पट्टियां बा पर जरूर अपने पुराने बी जड़े न चीनू टावटा ए बी फसल जड़ी सब बचाई के रखा। दूई गल एक और अजकल साढ़े प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज की गल की हो समय जड़ा है कोदरा या अह बोलते ना भी जिसो मंडल भी बोलते अह देश है ना, तो इसियो बाहने का भी यही टाइम है जड़ा समय चलिया है।
1: हाँ
0: तो साढ़े किसान मित्र कोदरा कने जड़ा मंडल है इसियो भी अपनी खेतीबाड़ी जरूर जगह देन कने खाने जड़ा ऐसा फिर बाद अहाँ डाक्टर के कैप्सूल कने गोलियां जी खानी है तो अगर तुह ये इलाज अपने अपने खेतीबाड़ी बाही के आपू खान तुह इस अनाज तो ज़्यादा फायदा थोड़े शरीर जरा सा मिली सकता
1: मिली सकता। अगर दिखा पहले भी अहाँ ये सारे ही बीज जो संभाली रखे
0: बिल्कुल कई कई तरह के बीज अह संभाल देते कने इसी कने दिखा किसान मित्र जी साड़ा समय जड़ा ऐसा किसान बाणी का हुआ करता है मौजा ग्राई दी
1: जी जी
0: तो इसी कने दसीए इस कार्यक्रम च सांझो तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह इसी कने ट्याले दे लंबरदार
1: कने किसान मित्र जी।

0: अभी आपने सुना मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: एक बार फिर से सारिया सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन सारिया श्रोतिया का हाँ कार्यक्रम च स्वागत करते हैं। टियाले पर लेकर ही हाजिर हैं कार्यक्रम किसान वाणी कहना जिन्हें किसान साथियों जिन्हें श्रोतिया अपने रेडियो सैट होनी ओन किते दिन दस दिए कि मैं किसान मित्र कहना मेरे सोगी अज हैं लंबरदार जी है ना।
2: बिल्कुल अज फिर अह भी हाड़ी तरफ से राम राम साड़ी किसान साथी कबूल कर
1: हाँ।
2: भी कमे तो अस क्या गलाइए भी टियाले पर बैठी के अज अस भी सीधे पटीए तो निकली कहना टियाले पर ही रौनक जी सलाह करते हैं
1: ला करते हैं। हाँ जी दिखा गल लंबरदार जी अज जी अह करनी है ना
2: जी
1: सह दिखा भी खेती की जी सह गल हो करती ही अह की जी मिट्टी है कहना अह उपजाऊ शक्ति कि बनी रहा तो यह तो होनी जलू कि अहर अगर प्राकृतिक खेती है ना।
2: बिल्कुल तुम ठीक लाया बी किसान साथियों पूरा विश्व ये बोली उठा कि सो रसायनिक खादा तो रसायनिक कीटनाशकों से रसायनिक खरपतवार नाशकों से दूर रहना है के अंधाधुंध प्रयोग जड़ा ऐसा इसका कुसी भी तरीके कन्नै चाहे सह जल प्रदूषित होवा दा मिट्टी प्रदूषित होवा दी वायु प्रदूषित होवा दी कन्नै मनुष्य का स्वास्थ्य सब तो बड़ी गल प्रदूषित होवा करदा।
1: बिल्कुल हाँ जी दिखा भी जिसी अहां बोलीए ना कि अहां अपने लोभ कन्नै लालच ताईं लंबरदार जी ने धरती माता पर मते सारे अत्याचार जड़े सह करी ले है ना
2: जी
1: हाँ थोड़ा जहा उत्पादन ज्यादा लैने के चक्रे च कि दे यूरिया दे दवा कने जे भी जेड़ा भी लकड़ जकड़ है
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: या बाजार कुछ भी है ना
2: निराई गुड़ाई तो हुण भुलने वाली गल आई गई जो है तो इस विच सानू कोशिश करनी है कि अगर आपू खाना है तो अमृत वाला अनाज उगाइए कने तुसी खाइए तो हाँ गाय दे जेड़ा जैविक खाद है तो इस गाय के गोहे कने तैयार करा या घट तो घट मैं तो बोलता वैज्ञानिक भी दसा करते भी जी मात्रा है कई बार अह सोचते कि पिछली बार घा नहीं जलिया था दुगुनी पाई दिया
1: हाँ।
2: पर तिस कन्नै दुगुनी पाने ना सिर्फ किसान साथियों सिर्फ घा ही नहीं फकोना तिस अनाज च भी सह दवाई का असर जरा आई जाता है कन्नै कुसी ना कुसी तरीके कन्नै सांझो सह खाई के अहां तिसने कोई ना कोई बीमारी जड़ी सह लाई लैंदे
1: हुण देखा ना भी हुण जगह जगह दिखा खड्डा दरियां ते नालां ते कुल्लां जो जड़ा सह पानी बंधिया खेतों में पानी जा करदा है तिना खेतों से हो कि सह पता नहीं कितने जगह जो लंघी कि सह पानी फिर तो जरा तिना दरिया फिर जाए रहा है तो देखा भी अगर इतना भी रसायन अगर अह जगह जगह अपने खेतों में अह अगर पांगे सही पानी फिरी जरा सा तेतु ते लिफ्ट हो के जिया पीने वाले पानी
2: बिल्कुल घर दोबारा पूजा करता कुछ ना कुछ तरीके कन्ने सांझो कन्ने सब तो बड़ी गल किसान मित्र जी जालू असा कोई दवा छिड़कते हैं तो इसने वातावरण भी खराब हों है ना जी वातावरण खराब हों तिस सह लिया करते या तिस हाँ इन्ह दवाइयों छिड़कने की इतनी जबरदस्त विधि है जी तो कल भी कोई भी दवा छिड़का करते किसान साथी हो हाथे च दस्ताने होने चाहिए मुँह में मास्क बज्जा होना चाहिए पूरा सिर
1: दवाई खरीदना चाहते हैं ना दुकाना बाजार दिखा कागज से मिलती है को
2: बिल्कुल सावधानी लिखी है
1: पढ़ने का टाइम ही कुछ नहीं है ना
2: कुछ टाइम
1: दिखते सट्टा भरा इस पूरी सावधानियां जड़ी सह जितनी की अह नहीं करी पाते हैं
2: बिल्कुल ठीक
1: कहने अहां के जी पट्टिया के रस्ते हैं सह पता नहीं अह जो अपनी खेतर तक पुजने कितने जमीन लंघी के जाना पौधा है ना तो देखा अगर हर जगह रसायन होगा मैं पता नहीं कुण दे दवा अपनी जमीन छिड़का तो हाँ कुण दे पा दे उन्नी कुण दे पानी है ना तो कुल मिलाई कि जिसी बोलते कि इन्होंने दिनों जी जी जी हूँ अहम की फसल।

0: खेतों में लगी ही है थोड़े दिन जो सह हूँ दवाई पाना शुरू हो
1: जी
0: जानी
1: जी जी
0: है तो हूँ धरती उसका पैर रखना भी जिस ये बोलते ना ना।
1: जुल्म है
0: हाँ
1: भाई, जितनिया भी ये जड़ियाँ चमड़ी ये बीमारियां हुआ करती हैं किसान
0: हाँ
1: साथी हो या कुछ ना कुछ तरीके अहाँ बोलते हैं अज महीना हुई है दवाई छिड़की है, पर
0: हाँ
1: तो हाँ ये मत समझा भी दवा छिड़की हो महीना हुई है चली होनी सह दवा दिखी है,
0: हाँ जी
1: तो कुछ ना कुछ तरीके कन्नै जिन्हों का चमड़ा या चमड़ी जिन्हों की अहें बोलगे कोमल है सह तिने बड़ी जल्दी अटैक कर दी कने इस गल्ला सू ध्यान रखना है कि भाई कने एक तो गल और किसान मित्र जी भाई चलो घाए फूकने वाली फसल है जो सा घा हो गया तो इस जितनी मात्रा दसी हो तितनी छिड़का कर दे। हूँ
0: हाँ
1: तो कई लोग अपनी बीड़ा के घाए च भी हाथ नहीं लाना चाहते, बीड़ा के
0: भाई
1: घाए भी
0: मैं
1: फूकी दे
0: बोला
1: दे।
0: भाई इतने जिन्हें बोलते ना जिसे बोलते ना हाँ इतने सुखमी हो
1: हाँ
0: गई है ना।
1: सुखमी हो जी
0: हाँ चल पहले जियां थोड़ा बहुत जियां हाँ रसायन छिड़काव करते हे तो जियां हाँ तो जियां पंप ही हे से
1: जी
0: थोड़ा
1: जी
0: मैनुअली काम होता हा हाथे ना गेड़ना पौंदा। हुण सही पंप चार्जिंग आले आई है ना
1: बिल्कुल मशीन
0: कने अगर मन लिया चार्जिंग आले पंप ने कोई मातड़ तमातड़ होया ना
1: जी
0: तो तीन ते चलते चलते पंप तो एक जगह खाली हो जाना है
1: हो
0: ना।
1: जाना खाली बिल्कुल सही
0: मैनुअली नहीं होंगे कि अगर कुछ पट्टी कुछ ठेडा लगी जा कुछ खड़ोना बोना तो चलता थोड़ी देर से पंप
1: रुकी
0: चल
1: है
0: रुकी तो जाता है
1: जी
0: ना
1: जी जी
0: कहीं वो तो चलते बटन अगर बंद नहीं किया तो मिनट च पंप खाली हो
1: खाली
0: गया।
1: हुई है कने
0: हाँ
1: इसका प्रभाव जरा अहाँ दिखा करते अजकल आंगन द्वारा च भी जड़े नसाब सफाई ना करके अहाँ दवाई छिड़कने की कोशिश करा करते,
0: हाँ
1: लेकिन बाल बच्चे छोटे छोटे निक्याने जड़े घर हैं इसका प्रभाव बाद में पता लगता इन्होंने दवाई का,
0: हाँ
1: तो हाँ जो ये चाहिए कि इन्होंने रसायनिक चीज़ा रसायनिक खरपतवार नाशकों रसायनिक जरा घाए फूकने वाली दवाई ने इन्होंने किसान साथियों सू दूर रहना है कने घट्ट घट प्रयोग इन्हों का करना है, कने आने वाले टाइम में अहाँ जी ऊर लगी जाना उसके बाद अहाँ घाए फूकने वाली दवा पाते हैं है ना जी,
0: हाँ हाँ जी
1: तां तिसा दा भी प्रयोग जड़ी डॉक्टर अनुमानित मात्रा दसी हो तिसदा प्रयोग करा और कने कोशिश हो सके तो तिसदा अहाँ बोलते ना पहले साढ़े किसान साथी ऑड करते थे टिंब करते थे ये सारिया
0: हाँ
1: गल्लां जड़ियां ने भूलीए हूँ तो
0: पूरी
1: सीधी दुआ पा करते कने उसके बाद धान दिखा कोई नहीं करता, तो सू कोशिश करनी है कि अपने तरीके कन्नै हाँ जो जड़ा सा अपना घा गू का ऑड टिंब जी ऐसा चलते चलते करने की कोशिश करनी है ना कि दवाई दे माध्यम कन्नै।
0: हाँ दिखा लंबरदार जी पहले अगर हाँ पुराने समय की गल करिए ना तो दिखा चलो इतनी जड़ी से वैज्ञानिक तकनीक नहीं ही खेती च है
1: जी
0: ना
1: जी
0: ना इतनी मशीन ही है ना थ्रेशर है ना आले बाहने वाले पावर टिलर है फिर भी
1: जी
0: अहाँ दे बुजुर्गों जोड़े से कितनी भी जमीन बाहिया होनी है
1: बिल्कुल
0: हूँ
1: बिल्कुल
0: लिखा इतने बांके बीज आई है ट्रैक्टर ने बुआई हो दी मशीन ने पूरी थ्रेशिंग हो दी उतनी जमीन खिली पवा दी।
1: खिली पवा दी सहूलत
0: हाँ
1: बद गई कने काम
0: हाँ
1: जड़े से कटाई ले
0: हाँ
1: हूँ पहले तो मैं ये बोलगा भी अद्धा अद्धा ग्रां टप्पे पर बे रहा
0: हाँ जी
1: है ना जी, भी
0: हाँ
1: पानी ना साड़ी है सुखी है हूँ तो लोग जे दिकर ऊरे लाने दिकर दी देरी है फिर आर दे आर खाली हुई आ कर दे,
0: जी
1: तो सू चाहिए कि अपनी फसल जो जड़ा है जड़ी अहाँ खानी है अपने परिवार जो जिन्ना सू ताकत देनी है तो अच्छे तरीके ने उगाइए कने अच्छे तरीके ने त्याद उत्पादन लेके इस प्रकृति ने मिली जुली के अहाँ काम करिए, कने एक और गल जी अहाँ किसान मित्र जी अहाँ खास करके इस टियाले के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि हल्ले भी इतनी मतलब अहाँ टियाले के माध्यम से भी बोलते रहते कि इन्हें जंगलों अग्गी ते बचा, लेकिन फिर भी ये जंगल बचा देनी है ना,
0: हाँ
1: तो कुछ ना कुछ तरीके ना अहाँ दिखते रहते भी दौलाधार दियाँ पहाड़ियाँ कुछ ना कुछ जला कर दियाँ इस प्रकृति को बचाने ताई अहाँ कम से कम पौधे नहीं लगाए सकते तो अग लगाने तो बचाए ना
0: जी
1: है ना जी,
0: हाँ
1: तो ये गल्लां जड़ियाँ जरूर अहाँ गठी बननी कर अगली गल अहाँ गांह भी करके, लेकिन उससे पहले अहाँ अपने किसान साथियों सुनाते एक प्यारा दिया लोकगीत
0: जी
1: ताकि तिना ही थकान जड़ा सा हल्का बना हुआ है ठीक
0: हाँ
1: है जी,
0: जी
1: तो आवा सुनते लोकगीत।
0: जी

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन नित नोइयां ते नोइयां जानकारियां अहां तोहां तक पहुंचाइए। चाहे वह अहां दे कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच एक उन्नत किसान मेरे सोखी अज जुड़ा करदे हन, करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दस्सा।
1: मेरा नाम है सुखजिंदर सिंह।
0: हां जी,
1: जिले बरदोवा, पोस्ट ऑफिस घाट जीरो।
0: अच्छा सुखजिंदर जी, खेती बाड़ी करते हैं ना?
1: हाँ जी, हाँ जी जनाब।
0: कितना के अरसा हुई है खेती करते?
1: खेती करते कि 2018 ते लगा प्रकृति खेती।
0: अच्छा,
1: करना तो उस टाइम 7 साल हो गए।
0: अच्छा, इससे पहले रसायन वाली खेती करते है?
1: 2018 ते पहले रसायनिक खेती करते है।
0: अच्छा,
1: उससे खर्चा ज्यादा आंदा।
0: हां ना,
1: हां खर्चा ज्यादा आंदा। उसके बाद आया 6 दिन का हड़ा सम्मेलन था अपना पालनपुर।
0: अच्छा, पालनपुर की तुहा ट्रेनिंग?
1: पालनपुर की।
0: अच्छा,
1: प्रकृति खेती सुभाष पालकर जी आए साढ़े ना,
0: जिन्होंने
1: जुड़े ने इस चीज।
0: हाँ जी, हाँ
1: उन्हें इस चीज समझाया सन जो बड़े गौर तरीके ने। तो 2018 ते अहीं प्रकृति खेती करदे ने, 14 ते लगा हा मतलब हाड़े फादर होर करदे इस चीज जो जियां खेती ओ बढ़ावे। तो उन्होंने जो मार्गदर्शन उन्हें दित्ते इस चीज जो।
0: अच्छा,
1: ते खेती करने दे।
0: अच्छा, ए यानी कि तुसीं 1 हफ्ते दी ट्रेनिंग ले करी आए हो ना?
1: 1 हफ्ते ट्रेनिंग कीती ओ तू, उसके बाद आए फिर उस तरह काम कीता अपना।
0: तो फिर तुसीं मास्टर ट्रेनर बनी ही है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तुहां दी पंचायत कौन दसी? तुहां
1: हाड़ी पौंदी है, घाट जोड़ पंचायत।
0: अच्छा, तो यानी कि तुहां अपनी पंचायत विच मास्टर ट्रेनर भी है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी जनाब।
0: और ना लोगों जो भी सिखाया भी आई के?
1: हाड़ा एक समूह है अपना।
0: अच्छा,
1: हां भी हां औरतां दा ना?
0: हाँ जी, हां।
1: ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਗਾਲੂ ਬਚਾਲੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ।
0: ਅੱਛਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਵਾਲ?
1: ਸਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਕਨਾਲ ਹੈ।
0: ਕਰਾਂ ਦੇਖਾ, ਅਗਰ ਹਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ
1: ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੈ ਵਿਚਣੀਆਂ ਬਲੋਕ ਚ ਜਾਈ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਦੀ 90 ਰੁਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਜੀਆਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ?
1: ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਕਤ।

0: ये पता भी लगी जंदा कि प्राकृतिक खेती
1: हाँ
0: जड़ी
1: जी
0: से
1: हाँ जी
0: कुतु मिलनी है सह
1: हाँ जी हाँ
0: बोलना
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: चली
1: जी
0: जा कि
1: हाँ जी हाँ
0: सुखचंद्र
1: जी
0: का घर
1: हाँ जी
0: कुतु
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जो भी बड़ी खुशी होंगी कि जल्द आहाँ दे किसान साथी है कोई अगर ते पेशे करने कोई जानता है ना
1: हाँ जी
0: कोई जल्द बाहर का बंदा होंगे तो सह कि जल्द कई बार बोलते ना कि वो हाँ फलाने मधुमक्खी है पालने आने दे घर जाना है ना
1: हाँ जी हाँ
0: या
1: जी हाँ
0: कुनी
1: जी
0: मुर्गे पाले या कुनी
1: हाँ जी हाँ
0: बकरियां
1: जी हाँ
0: पाली
1: जी
0: है
1: हाँ
0: या
1: जी
0: कोई खेती करा
1: हाँ
0: था
1: जी
0: ना
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी
0: तो पौध वगैरह आपू तैयार कर दे
1: नर्सरी हाँ आपू तैयार करता
0: पौध
1: अपने
0: आप ही कर दे।
1: अपने अपने पहले करता मैं बाहर मतलब पेंडे पुंडे सारे बेचने हैं मतलब
0: हाँ
1: सारे की
0: हाँ जी
1: समझाना
0: हाँ
1: है चीज ये तैयार करनी है
0: हाँ
1: इतनी
0: जी
1: गोबर पानी
0: हाँ
1: इतना हूँ ये है भी इस बार मैं घटाई था थोड़ा ये काम
0: हाँ आपू
1: सब
0: जोगी
1: अपू अपने जोगा कितना बस सारा जिन्ना भी
0: अच्छा
1: सर्कल कम
0: जिंगे
1: की
0: ये जल्द हाँ पौध तैयार कर दे ना
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: के पोलियो से बनाया या कि
1: पॉलियो
0: नहीं।
1: से बनाना पौधा जनाब
0: अच्छा
1: हाँ ये तो तुम एक बड़े बच्चे लिखा तैयार करना पौधे ने
0: हाँ
1: 15 दिन लाई के बच्चे लिखा बिल्कुल दिन रात इन्हें करना रहना पौधा
0: कितने भाई कितने था पोलियो सा।
1: ये देखो अही आप खुद तैयार कर दे इस चीज में
0: अच्छा
1: बंजा ही बनाने
0: हाँ
1: किट्ठे करने तरपाला तरपूला पानी है
0: हाँ
1: उसके बाद जो हीट रहे अंदर जे
0: हाँ
1: हो सकता है बर्खा हुआ है तो हीटर भी
0: हाँ
1: जाना पौधे अंदर इन्हें की
0: अच्छा
1: बीज उठाने तो
0: तो जी चलो पोलीथीन च जी चलो यदि भराई कर दे इन कप्पा च लगा दे या इधर कुछ
1: देखो
0: इन
1: नहीं
0: से।
1: अजकल आई हैं अजकल ट्रे आई हैं ना जी
0: अच्छा
1: पाली उस ट्रे होनी ना
0: हाँ
1: 50 50 होंगे पीस उसे किट्ठे पीस 50 पीस होने 50 बीज लाई दिए तो हाँ थोड़ी थोड़ा मैल ही लगना है मिट्टी अद्धा गलूडा लगना सारा तो उस 50 पीस निकल जाने तो
0: बाद दृश्य निकालना कहीं ट्रे दे
1: सब पानी दे के पहले पानी देना तो
0: सर
1: चीजा
0: गली
1: के
0: कंदी
1: हाँ
0: फिरी।
1: ना ना गल नरम होना थोड़ा ना पौधा नरम
0: हाँ
1: होना उसके बाद
0: हाँ
1: तो हाँ थले दे रख दी जी कना पौधा बाहर आ
0: अच्छा
1: जाता फिर
0: पूरी गाची बाहर आई जानी
1: गाची
0: है।
1: बाहर आ जानी जनाब
0: अच्छा सर सब यानी कि ठीक है ना
1: हाँ जी ठीक है
0: चुकने
1: सारा
0: रखने भी खरा है ना
1: बहुत
0: ये
1: वधिया
0: कदी
1: जनाब
0: धुप्पा रखना हो या कुछ
1: हाँ
0: जगह
1: हाँ जी
0: अदला बदली करनी हो ना।
1: हाँ जी हाँ जी कि गाँव का काम रखे है 2 3 गाँव रखने पूरा डेयरी का काम भी है यार
0: दादा जी तो दसिया कि तो हाँ प्राकृतिक खेती करा कर दे तो इस बीच खाद पी तो देसी पाते होने।
1: देसी
0: अच्छा
1: सारी जी देसी अहें क्या करना पे नालियां बना लेनी है कोई जी
0: हाँ
1: यहाँ खेतर बांधे ना जी सुहागा फेरते हैं
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: अहें वो नहीं करने अहें क्या करने हैं बट्टा पाने हैं
0: अच्छा
1: बट्टा उपर सब्जी लानी है जिस
0: हाँ
1: ग्रोथ भी शैल रहती
0: हाँ
1: सब्जियां दी
0: हाँ
1: कर
0: जी
1: जड़ियाँ नालियां होनी है ना उन जहाँ अपना कच्चा गोहा पाई चलना जो अगली फसल च हाड़ा जड़ा गोहा तैयार हुई
0: जी तो दस्या दो गाय रखी हैं।
1: ते 3 गाय जनाब
0: अच्छा तीन
1: तीन
0: गाय
1: गाय
0: के
1: जी
0: कौन नस्ल है गाय दी।
1: एक साहीवाल ही मेरे बड़ी ना
0: हाँ
1: सह सरकार ने मैं जो उस चीज अनुदान भी दिता साहीवाल रखने का वो
0: हाँ
1: है अपनी प्राकृतिक खेती जी यहाँ जीवामृत बनाने हैं
0: हाँ जी
1: सरकार
0: हाँ
1: का एक ये चीज ही अभियान था कि जो प्राकृतिक खेती का जड़ा गुंतर यूज होना है वो
0: हाँ
1: होना साहीवाल गाय का
0: अच्छा
1: तो उस चीज सरकार ने मैं मुआवजा दिता इस चीज के 33,000 रुपया मैं की इस चीज
0: हाँ
1: मिलना गाय का
0: अच्छा कुतु ते
1: तो
0: अंदी भी गाय
1: ये गाह मतलब अपने इस
0: यानी कि सरकार द्वारा तो जो भी अनुदान सहायता राशि
1: हाँ
0: मिलती
1: अनुदान
0: है
1: सहायता राशि मिली
0: एक गुंतरे इकट्ठे करने वास्ते एक से लाइनिंग वाला भी मिलता
1: हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ जी
0: स्टेप
1: हाँ जी हाँ
0: से
1: जी
0: बनाया तो
1: हाँ
0: हाँ
1: जी मैं खड्डा बनाया अभी तो हड्डे
0: हाँ
1: घोड़ का घाट करे 20 लीटर
0: हाँ
1: डेली एक गुंत गाय गुंतर होंगे
0: हाँ
1: उस भी सरकार अनुदान दे दी 8,000 रुपया गौ खर्च
0: हाँ
1: पानी ताई
0: हाँ जी हाँ
1: देखो सरकार भी एक 6,000 रुपया इस टाइम गेहूं दे दी रेट है सरकार
0: हाँ
1: जमींदारा वास्ते किसाना वास्ते है
0: हाँ जी
1: बहुत खुशी की गल है
0: हाँ जी
1: प्राकृतिक खेती जरा एक मोड़ बड़ा बड़ा हिमाचल चाहिए हाड़े से
0: हाँ जी कर दिखा भाई कुल मिलाई कि हाँ ये बोल सकते कि अगर हाँ कुछ करना चाहन तो सरकार हर एक कदम पर हाँ सोगी है।
1: मैं बोलना हर ते एक गां आ गए हैं
0: हाँ
1: किसान एक बारी चल रहा है सही गां
0: हाँ पर ये है कि हाँ जो कुछ करना पौना
1: करना पड़ना
0: करें मदद दी जड़ी से कोई कमी नहीं है ना।
1: नहीं जी नहीं
0: आजकल दिखा ऐसी कृषि दिया इतनी
1: हाँ
0: जंग
1: जी हाँ जी
0: स्कीम आई है
1: हाँ जी
0: तारबंदी
1: हाँ
0: बाड़बंदी
1: जी
0: कोई
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: हाँ सिंचाई दे जोड़ी
1: बिल्कुल
0: मर्जी
1: जी
0: स्कीम
1: बिल्कुल
0: ले लिया है ना
1: हाँ जी
0: कुछ फसल का बीमा करवाई
1: बिल्कुल
0: लिया
1: करा
0: है ना
1: लिया
0: इसके
1: बिल्कुल
0: बावजूद भी दिखा ऐसी ऐसी तकनीक नोई नोई आई हैं लेकिन फिर भी जमीन जड़ी सर खिलियाँ तो
1: बंजर
0: खिलियाँ
1: रखी है बंजर सारी
0: पौना शुरू हो गई ना तो जी अपनी जमीन बच्चे कुछ पौधे वगैरह भी लगाए फलदार।
1: असा लाए जी एक सेबे बूटे लाए ना पर
0: अच्छा
1: सेब साढ़े थोड़ा टेम्परेचर च कामयाब नहीं हुए मेरे है तो
0: अच्छा
1: टेम्परेचर ही सेब ना मतलब
0: हाँ
1: कामयाब नहीं हुआ जरा यह अमरूद का पौधा
0: हाँ
1: वो लाया एक मैं इलाहाबादी
0: हाँ
1: ताइवान पर
0: हाँ
1: वो उदी ग्रोथ ठीक है अपने इलाके च अमरूद भी शैल है मीठा अमरूद है
0: कन साइज भी था काफी
1: हाँ
0: बड़ा
1: काफ़ी है
0: बड़े
1: 500 500 MG का साइज है खाने में मीठा वधिया
0: तो कदू लाए सेबां दे
1: ये
0: पौधे।
1: लाए मैं सर 2020 चलाए 5 साल हो गए तो हर साल ही फल दे
0: अच्छा
1: 6 महीने बस दे फलदा फल
0: सेब लगे भी इयां
1: सेब लगे हैं 2 3 बारी पर फिर हाँ रंगड़ा रुंगड़ा पे गया पंगा
0: तां थोड़े छोटे रहे ये होने ना
1: छोटे रही ये कहना एक रंगड़ बड़े पौधे ना
0: ते कदू तले ही पौधे इयां सेबां दी कना
1: ये
0: मधु ना
1: हॉर्टीकल्चर च मंगवाए हैं जनाब
0: ओ तो नगोटा सूरियां
1: ना
0: मिली।
1: आम नगरोटा सूरी मिली है साढ़े ना ब्लॉक च
0: अच्छा इधर लाभा जी आंब नींबू वगैरह नहीं कुछ।
1: नींबू नाबू जो देखो हम अही करने हैं खेती सब्जी सब्जियां वगैरह दी
0: हाँ जी
1: तो
0: हाँ
1: इस चाहे वो चीज़ यूज करिए
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: फिर साढ़े यहाँ जमीन रुक जाती सारी
0: जी गाय का तो हाँ डेयरी का जिक्र किया
1: हाँ
0: था
1: जी
0: दुध वगैरह बेच दे
1: हाँ जी जनाब
0: कुतु बेचना है।
1: से अपने पिंड च भी जाता जिन पता हाड़े लागे डेरियां डूरियां तो होंगे डेरिए सुट्टे ही तो
0: हाँ
1: ये है पिंड च लगी जाता दुध सारा
0: अच्छा
1: देखो
0: किन्ने दुध बिकी जाता देने का।
1: 3 गाय इस टाइम 2 गाय सूई हैं तो कोई 7 लीटर दुध इस टाइम बंद ही लाया मैं
0: अच्छा
1: हाँ
0: क्या भाव रेट है वो तो
1: सठ
0: जल
1: रुपये
0: अच्छा
1: 60 रुपये बिका
0: हाँ
1: दूध
0: देखा ग्राएं चेता इतना भाव भी जरा सा ठीक है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: कंदुए भाग रहा देखिए तो देखा खाल महंगी तारा मेरा
1: सब कुछ
0: महंगा
1: महंगा ही
0: का महंगे हुई
1: हाँ जी
0: है
1: हाँ जी
0: ना
1: हाँ जी
0: वो महंगा
1: सब कुछ

0: देखिए दूध बिकी अंदा ना
1: बिकी अंदा जनाब सारे
0: बाकी नहीं है, छाव वगैरह नहीं छोड़ते।
1: छाव वगैरह जनाब सब कुछ छोड़ दे हुन घर च दुध जी होना तो
0: हाँ
1: छाव भी छोड़नी है
0: जियां पनीर वगैरह
1: सब
0: बेचते
1: कुछ जनाब
0: खोआ।
1: खो होई गया पनीर होई गया जे करे दिल कीता तां बर्फी बनाई ले जनाब
0: हाँ
1: दिल कीता तां पनीर बनाई लिया कर बाहर भी देता जिसी जरूरत है जिन्नी को नहीं बोलिया कि पनीर चाहिए जी तुसी भी मैं तां
0: अच्छा
1: देता पनीर
0: तो हाँ जी सिंचाई का क्या साधन है उत्थों?
1: सर एक तां अपने खड्डा दा मोटर चुक्या पानी
0: हाँ जी
1: कर
0: हाँ
1: एक बोर है हड़े दा अपना
0: अच्छा
1: हाँ सरकार दा वो सोसाइटी बनाई है अपनी बोरे दी
0: हाँ
1: तो उस
0: जी
1: चाड़ा से निकली जाता है पानी या सर्कल
0: अच्छा
1: कर दो मोटर जो लोड नहीं होता दूसरी मोटर कर लेने स्टार्ट है तो पंगा
0: हाँ
1: ही है बिजलियां दा अजकल पर लोड तो
0: हाँ
1: पूरे नहीं होंगे
0: हाँ जी
1: पर चलो फिर भी उतना कर है भी अहें किसानी कर सकते हैं अपनी
0: अच्छा
1: जमीन सिंचाई कर सकते
0: जेड़ा
1: हैं
0: बोर कराया है आपू कराया कि कुछ अनुदान वगैरह?
1: नहीं नहीं अनुदान ये चौधरी चंद्र कुमार जी उस टाइम हाड़े फादर हो रहा बड़ा सहयोग किया चौधरी चंद्र कुमार जी हाड़े ने इस टाइम कृषि मंत्री ना
0: हाँ जी
1: उन्होंने बड़ा सहयोग किया जी हाड़े घर टका अड़वें पला दिता
0: अच्छा
1: है साड़ा घर किला घर हाड़ा किला है ना अद्धा किलोमीटर घर तो है कहना अद्धा किलोमीटर तो है साइडा च
0: हाँ हाँ
1: किला
0: जी
1: घर है जनाब तो फिर उस हाँ एक सोसाइटी बनाई अपने
0: अच्छा
1: चाचे ताऊ मां नाल रली के
0: हाँ जी
1: तो उस चीज हाँ अपना पानी का सर्कल चलाया
0: अच्छा
1: हाँ कहना एक हाड़ी है खड्ड लग गई है जरा सदाबहार पानी है मुकदा ही नहीं
0: हाँ
1: एक साथ चाह अपनी मोटर रखी हुआ
0: अच्छा यानी कि पानी पूरा हो जाता
1: पूरा
0: जल
1: जना पूरा
0: लगाना हुआ था ना।
1: हाँ।
0: बाकी टैंक वगैरह नहीं कोई बनाया जी रोकने
1: देखो नहीं
0: वास्ते
1: नहीं नहीं
0: बरसाती
1: टैंक नहीं
0: पानी है ना?
1: नहीं जनाब अज तक नहीं बनाया बनाना पैना मैंने वो ना
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: बहुत जरूरी है जनाब क्योंकि सब्जियां कम करना लाइट
0: हाँ
1: चल जाए पानी चाहिए उधरों तो टैंक तो
0: हाँ जी
1: बनाना पैना है ना
0: हाँ
1: जे काम
0: जी
1: जी करना तो फिर
0: हाँ
1: पिछे
0: जी
1: क्या रहना
0: बाकी जी तो दस्या काफी जमीन है तो हवाल था जमीन ने बाड़बंदी वगैरह क्या कहती हो?
1: बाढ़ बंदी जनाब हाल तो यही है पे चलो जे बहरले जंगली जानवर ना उन्हों का देखो परमात्मा वालों बंदी परहेज है
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: थोड़े घट आमदे मेरे लिए
0: हाँ जी
1: बाकी तारबंदी कीती है अपनी
0: अच्छा
1: हाँ
0: बाकी नहीं कोई स्कीम का लाभ नहीं लिया कोई है ना?
1: इस चीज बाड़बंदी जिन लिया जनाब अजे
0: अच्छा
1: अजे जिन
0: अच्छा
1: लिया बाकी प्रकृति खेती च मेकी सत अठ लाभ मिली इस चीज अनुदान मिली
0: हाँ
1: हर एक जो जितने जितनी आप पता क्या जितनी किसान मेहनत करगा सरकार भी
0: हाँ
1: उस हिसाब ने प्रोवाइड
0: हाँ
1: कर
0: अगर
1: दी ना बंदे
0: देखा
1: की
0: कुछ भी लाभ अगर कुछ ये मिलना था तो कुछ
1: हाँ
0: ना कुछ तो करना पौना।
1: करना पौना दिखाना पौना
0: खाली
1: है
0: अगर हाँ अपने इस फायदे तक अगर लाभ ही लें ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो
1: हाँ जी
0: तीन
1: हाँ
0: भी जड़ा सा नहीं चलना
1: नहीं
0: काम ना
1: चलाना कई बोलते कि
0: क्योंकि
1: हाँ जो ये नहीं मिल रहा नहीं देखो पहले कुछ करना पौना सरकार जो
0: हाँ
1: दिखाना पौना कि हाँ एक किसान के लायक ना कन काम करके ओके दसाने हैं
0: करना देखा अजकल तो किसान जेड़े की प्राकृतिक खेती वाले किसान है जी तो हाँ जिक्र किया
1: हाँ जी हाँ
0: कि
1: जी हाँ
0: कणके
1: जी
0: रेट ज्यादा ही हल्दी ये है
1: हाँ जी हाँ
0: उन्होंने
1: जी
0: एक पंजीकरण हुआ था कि देना जो प्रमाणित किए ज्यादा कि ये बड़ा किसान है विभाग के कर्मचारियों द्वारा कि इस ये जेड़ा था प्राकृतिक खेती करता
1: हाँ जी हाँ जी
0: इं तो कोई भी अपना उत्पाद ले आ तो नहीं बोना तो देसी है बिल्कुल नए
1: नहीं
0: रेट दिया ना
1: देखो इस चीज ये
0: हाँ
1: जुड़े ने हुई है 8 साल क्योंकि 2018 ते प्रकृति खेती का एक अभियान चल रहा है इस चीज
0: हाँ जी
1: है ना
0: हाँ
1: इस चीज जो बंदा उस टाइम दे चले आया
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: तो समझो आज तक कामयाब है
0: हाँ जी
1: प्रकृति खेती का मोड़ एक नवा लियाने
0: जी
1: वास्ते
0: जी बिल्कुल तो हाँ ठीक गलाया कहना देखा भाई कोशिश अहाँ दी भी ये होना चाहिए कि हाँ जो भी ओला ओला होना प्राकृतिक खेती वाले पास जरा सा मुड़ना पड़ना जी तो दस्या कि
1: हाँ
0: मती
1: जी
0: सारिया
1: हाँ जी
0: जी बीमारियां बचने का अगर कोई इलाज है तो सही है प्राकृतिक खेती है ना।
1: देखो एक दिन ये मोड़ लेना पौना हिमाचल हर किसान जो इस मोड़ पर आना पौना प्रकृति खेती दे काबिल बनना पौना
0: जी सुखजिंदर जी अहां दी जेड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हें जो तुहां क्या सुनेहा देना चाहेंगे कि सही कि अपनी खेतीबाड़ी करी के जड़ा सा अपना रोजगार चलाई पान?
1: तो हाँ मेहनत कर रहा है ना
0: हाँ जी
1: अपनी जे जमीन जायदाद है अपने को बाहर घूमने कोई लोड़ नहीं
0: हाँ जी
1: तो अपनी जे अपने को सिंचाई के भी साधन है तो अपनी खेतीबाड़ी करो सब तो बढ़िया तरीका यही है
0: हाँ जी
1: सबसे बड़ा रोजगार अपनी
0: हाँ देखा भी अपना काम है ना
1: हाँ जी
0: कोई कुछ से रोब नहीं है
1: मतलब भी कोई नहीं जनाब
0: हाँ कहना देखा मते अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जेड़े से अहां दे किसान जेड़े से अपनी
1: हाँ जी
0: पहचान जेड़े से बनाई ले ही है।
1: हाँ जी
0: जी सुखजिंदर जी तो हाँ अपना कीमती समय निकाली गई अहां दे ट्याले पर आए अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव तो हाँ अहां कन्ने साझा किते तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों इन किसान भाइयों तजर्बे जड़े ने जरूर तुहाने जड़ा सा फायदा देंगे तुहां जो
0: हाँ
2: कन्नै
0: जी
2: अपनी खेतीबाड़ी जो तुहां भी उन्नत जड़ा सा बनांगे
0: हाँ जी
2: तां हुण संझा दा बेला है कन्नै एक बारी फिर एक प्यारा देहा लोक गीत सुनने दा है
0: जी
2: तां आओ किसान साथियों सुणांदे प्यारा देहा लोक गीत
0: जी

0: भाई किसान साथियों दिल नहीं लगता कली ज्यादा तो अजकल तो दिखा किसान मित्र जी खेतरे च किला माणू तो इं लगता भाई रोल छोल ही करा दा
1: हाँ।
0: ऊरे लाने हो मंजा पर जगह लानी होवे तो अनजान आदमी है तो बसे ते बाहर काम
1: था
0: पटीए तो जितने आदमी उतने घट तो गल ही है भी हरेक लोक गीत जड़ा सा अज नज़ारेदार मैं ये बोलगा भी थकान जरूर उतारी होनी कने जड़े अजकल जड़े हड़े नौकर बाहर नौकरियां करा करते ना तो तिन्हें भी खूब हक्का पवा कर दी भी आई आ अंब पक्के हो कने खाई आ लीचियां पकियां है कने ये नहीं पता भी उंदा मुंडा तेना पटीए देने मेरे घर दे तो गल ही है भी चलो कमे की गप ऐसा भी खुशी है खुशी आई के कमवा करते साढ़े ऐसी नहीं गल भी साढ़े नौकर जड़े ने पटीए च कमा कर दे।
1: हाँ जी।

0: कने खूब रौनक जड़ी सी ना लाई होवे। कने दूई गल क्या है भी बरसात आवा करती है, तो
1: जी
0: मैं अपने किसान साथियों से बोलना चाहूँगा कि अगर तुम कोई भी फलदार पौधा जड़े अपनी खेती बाड़ी तुम दिखना चाहते, अजकल तो नए नए फल जड़े ने स आवा करते, कने अगर तुम अपनी खेती बाड़ी लगाना चाहते हैं तो बरसात सब तो वधिया मौका है तो जो प्रकृति की सेवा करने का, कने अपनी खेती बाड़ी फल पौधे तैयार करने का।
1: बिल्कुल हाँ जी, दिखा भी हूँ थोड़े दिन ये दिखा ब्लॉक स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र च या कुछ प्राइवेट नर्सरियां पर घर घर गड्डियों में जड़े से बेचने वाले आ
0: फलदार
1: जाना,
0: पौधे आवा कर दे है
1: बूटियां
0: ना।
1: बेचने वाले हैं, तो कोशिश ये करा कि तो हाँ जरूर जड़े से कुछ एक पौधा रोपण जड़े से करना ही है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: अहां तो नारा देंदे टियाले दे माध्यम ते हरेक बीड़ा पर एक पेड़
1: बिल्कुल
0: है ना जी,
1: हाँ हाँ
0: तां तुहां चाहे फलदार ला काया वाला ला, लेकिन कुछ ना कुछ पौधे जड़े सा जरूर लगा ताकि साड़ा पर्यावरण दी भी सुरक्षा जड़ी सा होंदी रहे।
1: हाँ
0: कने जी हाँ पहले भी गल करा करते थे पे अलग अलग फसलां अलग अलग अनाज जड़ा सा तुसा बा पहले दिखा तुहां पे हाड़ियां बीड़ा पर मां होंदे थे
1: हाँ जी
0: भई एक परिवार अपने पूरे साले दे मां मतलब दाली दी फसल जड़ी सा अपनी खेती च कढ़ी लैंदा था,
1: हाँ जी हाँ
0: लेकिन सही गल आई भई सुखमी होने वाली
1: हाँ
0: भई हुण जड़ी सा फसलां नहीं बाह करदे लोग कने घटा करदे, लेकिन अगर अहां यही चीज़ां अपने खेती बाड़ी च उगान कने तिन्हें खान तो हाँ दिखा तिना सर स्वाद क्या होंदा है
1: बिल्कुल हाँ जी,
0: ना
1: अगर
0: जी।
1: देसी चीजें को तो हाँ जो मिल सकती हैं ये हाँ जो ग्राए ची मिलनी है ना।
0: बिल्कुल, अज भी पंजाबी लोग पहाड़ी अनाज करी के लखा रुपये कमा करते अपने इलाके चले जाई के,
1: हाँ
0: अज मतलब धाना निकलदे ही सह धाना ही ले जा करते, कणका निकलदे कणका ले जा
1: हाँ
0: करते,
1: कि पहाड़ी अनाज है
0: हाँ कने
1: हिमाचल का।
0: जैविक
1: हाँ
0: तरीके कन्नै उगया है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: अहां जो चाहिदा कि अपने उत्पाद जो और जैविक तरीके कन्नै अहां पूरा पूर्ण जैविक तरीके कन्नै उगाए के इसका लोगों भी फायदा देन कर अपनी सेहत भी जड़ी से तंदुरुस्त बनान।
1: हाँ जी
0: इसी कन्नै दिखा भी किसानवाणी कार्यक्रम का समय इतनी संपन्न हुआ करता, संपन्न करने से पहले तुझे दसीए इस कार्यक्रम च सांझो सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने,
1: जी
0: कन्नै इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह, इसी कन्नै टियाले दे लंबरदार।
1: कने किसान मित्र जो दिया अनुमति।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: जी,
1: जी
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। वीबीजी रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। राज्य में वीबीजी रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने और प्रदेश हितों के अनुरूप सुझाव तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति 29 जून तक मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार योजना के कई प्रावधान राज्य और स्थानीय श्रमिकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर वीबीजी रामजी योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी राज्यों को 30 जून तक नई योजना अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नई योजना को अधिसूचित करने वाले राज्यों को ही बजट आवंटित किया जाएगा। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के लिए हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: दूसरी ओर पूर्व परिवहन मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के निर्णय को कांग्रेस सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है और अब एस्मा के सहारे उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री

0: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में रजोल, अनुही, जांगल, बग्गा सड़क और इसी मार्ग पर बनने वाला पुल शामिल है। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्य तय समय और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माण में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने युवाओं और नेताओं से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश के विकास में सहयोग देने का आह्वान किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक व महान राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे प्रत्येक देशवासी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
2: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
0: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। वीबीजी रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग जल शक्ति मंडल नालागढ़ जिला सोलन से प्राप्त सूची अनुसार जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को अंशकालिक आधार पर भरा जाना है। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यता इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर का किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से सर्टिफिकेट होना चाहिए। पैराफिटर के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए और फिटर ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। मल्टीपर्पज वर्कर के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 8वीं पास होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन 30 जून 2026 को सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल 40 पद भरे जाने हैं, जिनमें पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
6: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। रात्रि के 8 बजे हैं और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं

गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। आज के सबरस की शुरुआत हम करेंगे रूना नैला की आवाज में गाए इस गीत से।

सबरस कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं गुरनाम भुल्लर की आवाज में।

जी हाँ, सबरस कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोता, इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत।

0: इसी के साथ देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ 8
1: प्रियंका अरोड़ा।

0: चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों

0: से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज़ हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज़ वर्षा, आंधी और तेज़ हवाएं चलीं जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज़ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow.

जी हाँ श्रोता, आप जान ही गए हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है गायक नितिन मुकेश की। आपको बता दिए कि नितिन मुकेश भारतीय हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गायक है, जिन्होंने 1980 से 90 के दशक में कई संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, राजेश रॉजर और नदीम श्रवण जैसे नाम शामिल हैं। उनका जन्म 27 जून 1950 को हुआ। जानेंगे उनके बारे में और भी कई सारी दिलचस्प बातें, साथ ही साथ आपको सुनवाते रहेंगे कुछ छुनी के गाए हुए प्यारे प्यारे से गीत। कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में।

जी हाँ, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आपसे बात हो रही है प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश के बारे में, जो कि दिग्गज गायक मुकेश के बेटे और नील नितिन मुकेश के पिता हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि उन्होंने 1980 से 90 के दशक में अपने रोमांटिक और मधुर गानों के लिए पहचाने जाने वाले नितिन मुकेश ने कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज़ दी। उनके द्वारा जो है वो मनोज कुमार, शशि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर जैसे जाने माने अभिनेताओं के लिए कई बेहतरीन गीत गाए

श्रोताओ, आपको बता दें कि रितु मंगेशकर का गायिका लता मंगेशकर के साथ बहुत ही गहरा और भावनात्मक रिश्ता था। वर्ष 1976 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तब लता जी ने ही नितिन का हाथ थामा और उन्हें स्टेज पर ले जाकर अपने पिता की इस संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने का हौसला दिया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कई भजनों में भी अपनी आवाज़ें दी और उन्होंने 90 के दशक में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी

जी हाँ, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं अजय सिंह की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

अभी आपने सुना बिमला चौहान की आवाज में ये लोकगीत। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं धाम गीतादि कार्यक्रम। धाम गीतादि कार्यक्रम में अब आइए सुनिए शांति बिष्ट की आवाज में ये लोकगीत।

श्रोता, इसी लोकगीत के साथ आज का धाम गीतादि कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हाँ, रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज के चित्रपट संगीत की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बेमिसाल फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर की। ऐसे ही प्यारे प्यारे से गीतों को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

जी हाँ, सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है चंबल की कसम।

चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनिए यादगार फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

चित्रपट संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला से। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इजाजत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: इसी के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है समाचार, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क

0: द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।